मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आज सोमवार है, शक संवत 1948।

की श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 17 अगस्त 2026 ईस्वी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और

0: जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है अरहर की फसल की देखभाल। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, अरहर की फसल में कुछ कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप होता है, जिनसे फसल को यदि समय रहते न बचाया जाए तो इसकी पैदावार प्रभावित होती है। आज हम अरहर की फसल में लगने वाले कीड़ों एवं बीमारियों की चर्चा करेंगे। ये किस तरह से फसल को प्रभावित करते हैं और किस तरह इनका नियंत्रण किया जाए। उकठा रोग अरहर का एक बहुत ही भयानक रोग है। यह एक फफूंदी से फैलने वाला रोग है। यह पौधों में खाद्य पदार्थ के संचार को रोक देता है, जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा यदि रोगी पौधों की छाल हटाकर देखा जाए तो जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। अभी तक इस रोग को रोकने का कोई कारगर उपाय तो नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियां यदि बरती जाए तो इस रोग से फसल को बचाया जा सकता है। जिस खेत में उकठा रोग का प्रकोप अधिक हो, उस खेत में 3-4 साल तक अरहर की फसल नहीं लेनी चाहिए। यदि ज्वार के साथ अरहर की सहफसली खेती करते हैं तो भी उकठा रोग का प्रकोप कम हो सकता है। दूसरा रोग अरहर का बंझा रोग है। इस रोग से ग्रसित पौधों में पत्तियां

0: अधिक लगती हैं, फूल नहीं आते हैं जिससे दाना नहीं बनता है, पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं तथा हल्के हरे रंग की हो जाती हैं। इस रोग के रोकने का भी कोई कारगर उपाय भी नहीं है। हाँ, ग्रसित पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए या मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, अगर शुरू में ही ध्यान दिया जाए तथा इसकी जो अवरोधी प्रजातियां हैं उनकी बुआई की जाए तो इस रोग का प्रकोप कम होता है। अरहर की फसल में जो कीड़े लगते हैं उनमें प्रमुख है एक फल बेधक कीट, दूसरा फली मक्खी। इनकी गिडारें फलियों के अंदर घुसकर हानि पहुंचाती हैं, क्षतिग्रस्त फलियों में छेद हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 36 ईसी की लगभग 320 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर यह दवा उपलब्ध न हो तो इंडोसल्फान 35 ईसी की 125 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यह दवा अगर न उपलब्ध हो तो निबोली का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो नीम का बीज होता है उसका 5% का घोल बनाते हैं और उसमें साबुन का घोल मिला देते हैं और छिड़काव करते हैं, या NPV का भी छिड़काव कर सकते हैं जो कि 350 LE प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल कर छिड़काव किया जाता है। अरहर में ही एक पत्ती लपेटने वाला कीड़ा लगता है। इसकी सूढ़ियाँ पौधों की चोटी की पत्तियों को लपेटकर सफ़ेद जाला बुनकर उसी में छिपी पत्तियों को खाती हैं। पत्ती लपेटने वाले कीड़ों की रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 ईसी की 125 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो 125 लीटर दवा की आवश्यकता होगी और 800 लीटर पानी की। वास्तव में दलहनी फसलों में कीड़ों एवं बीमारियों का प्रकोप कुछ अधिक ही होता है, मगर यदि उन्नतशील तकनीक अपना करके इसकी खेती की जाए और कीड़ों एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए उचित रसायनों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से अरहर की फसल में जो कीड़े एवं बीमारियां लगती हैं उनका प्रकोप कम किया जा सकता है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अरहर की फसल की देखभाल करनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था अरहर की फसल की देखभाल। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

चल रहा हूं धूप में तो महाकाल तेरी छाया है, शरण है तेरी सच्ची, बाकी तो सब मोह माया है।

ढूंढती हो, कारण का भी कारण, हर कारण का एक कारण, फिर भी अंततः एक कारण बच ही जाता है, वही अज्ञात है, वही शिव है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आवाजें थी हरिओम शरण, सोनू निगम, तुलसी कुमार और देवाशीष डे की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु, जिसमें आज का विषय है भारतीय संस्कृति में शिव तत्व।
1: जीवन में जो अभीष्ट, कल्याणकारी और सुंदर है, वही है शिव तत्व। जो आदि, मध्य और अंतहीन है, निराकार है, विभु, चिदानंद, अद्भुत है, वह है शिव। सत्य की कोई परिभाषा नहीं होती, सौंदर्य की कोई संज्ञा नहीं होती, और न ही शिवत्व का कोई विशेषण होता है। परंतु भारतीय संस्कृति की कल्पना सत्यम, शिवम, सुंदरम की रही है, और इसे ही हम अपने जीवन का प्रतीक बना चुके हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार शिव सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, अभय, नित्य और पवित्र है। जटाजूटधारी भगवान शंकर के पार्श्व में माँ पार्वती विराजमान रहती हैं। उनके समान द्रवित होने वाला और कौन है? जिसने भी उनकी उपासना की, वांछित फल मिलने में देर नहीं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ होने के कारण

0: आचरण ऐसे कार्य करते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। अमृत मंथन में विष निकलने पर कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, परंतु शिव ने विषपान किया ताकि सृष्टि का कल्याण हो। वे मनुष्य को सतोगुण की ओर जाने का संकेत देते हैं। उन्होंने फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विषपान किया, वहीं उन्होंने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उमा को अंगीकार भी किया। तभी से यह रात्रि महा शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऋग्वेद में रात्रि आकाश की बहन और ऋतु की माता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यामं जागर्ति संयमी, अर्थात सभी प्राणीजन जिसे रात्रि मानकर सो जाते हैं उसे देवी का रूप मानकर योगी जन उस समय जागरण करते हैं और अभीष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसी कारण शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शंकर प्रत्येक के हैं, समाज के सभी वर्ग उनका विशेष सम्मान करते हैं। भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी से लेकर सुर असुर नरमुनि सभी उनकी वंदना करते हैं। महल अट्टालिकाओं में निवास न करके कैलाश पर्वत पर मुक्ताकाश के नीचे उनका निवास है। वे अति साधारण वसहे बैल की सवारी करते हैं। भगवान शंकर अपनी सर्वव्यापी भूमिका में अरूप भी हैं, स्वरूप भी। उनका मूर्तिमान दर्शन धीरे धीरे अमूर्त होता गया और इस तरह वे अत्यंत सरल सहज उपलब्ध होते गए शिवलिंग बनकर। कदाचित यही है जीवन का शिव तत्व जिसे आत्मसात करके हम शिवोहम का जाप करते हैं और शिवरात्रि पर उन्हें स्मरण करते हैं, जो हैं भोले भंडारी, जो नित्य नूतन हैं, नित्य नवीन हैं, जिनसे एकाकार होने का अर्थ ही है संपूर्ण परमानंद की प्राप्ति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, जिसमें आज का विषय था भारतीय संस्कृति में शिव तत्व। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियां और बचाव के उपाय। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता।
2: बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियां और उनके बचाव के उपाय के बारे में आज बताऊंगा। देखा जाए तो बच्चों को जो बार बार बीमार पड़ते हैं ये बहुत आम बात होती है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए जो बीमारियां होती हैं वो आमतौर पर बच्चों को ज्यादा हो जाती हैं। ये जो बीमारियां हैं किसी न किसी समय, जैसे बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है, तो उसी बीच में इम्यूनिटी डेवलपमेंट के दौरान उनको बीमारियां हो जाती हैं। ढंग से सही समय पे इलाज न किया जाए तो वो ज्यादा गंभीर हो जाती है और कभी कभी तो मतलब की मृत्यु तक हो सकती है। जो अभिभावक हैं या उनके माता पिता हैं, जो बच्चों का देखभाल करने वाले हैं, वो बच्चों की सामान्य बीमारियों के बारे में उनको अवश्य पता होना चाहिए कि यदि कुछ इस तरह की हो जाए तो तुरंत उनको कैसे वो लोग देखें। तो ये देखा जाए तो बच्चों में जो सामान्य तौर पर बीमारियां होती हैं उनमें गले में खराश होना, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, दस्त या डायरिया है, या फिर त्वचा में संक्रमण है, या पेट में दर्द का होना है, या फिर बच्चों को कभी कभी कान में दर्द हो जाता है, या उल्टियां होना है, या फिर बुखार आना है, और इसी तरह से एक बीमारी ब्रोंकाइटिस होती है जो कि फेफड़ों में सूजन के कारण होती है, तो ये भी है। फिर गैस्ट्रोएंटाइटिस जो कि आंतों में संक्रमण, ये हो जाती है। तो और इसके अलावा पेट में कीड़े हो जाना, ये बच्चों में बहुत ही आम बात है, यूटीआई या मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन का होना, के अलावा निमोनिया है और बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन ये जो मुख्य मुख्य बीमारियां हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये सब यदि बच्चों में हो जाती हैं तो इसके लिए अभिभावकों को तुरंत सचेत होकर उसका ध्यान रखना चाहिए।

0: जैसे गले में खराश का होना। गले में खराश जो है एक ऐसी बीमारी होती है जो कि से गले में दर्द होता है और ये जलन पैदा करती है, जिससे अक्सर खुजली जैसा महसूस होता है। बच्चे अक्सर इससे पीड़ित हो जाते हैं और खाने पीने के दौरान इनके लक्षण जो है ज्यादा बदतर हो जाते हैं। यह रोग वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से हो सकता है। लक्षणों में जैसे है कि गले में दर्द होना या गले में खुजली का होना, और बच्चों को निगलने की समस्या आती है। कुछ खाना खाते हैं तो उसको निगल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज बदल जाती है, उनको बुखार है, खांसी है, या फिर नाक बंद होता है, या फिर छींक आती है, या उल्टियां होने लगती है। ये सब इसके लक्षण होते हैं। यदि हम इसके बचाव के लिए देखें, जो वायरल डिजीज होती है जनरली इसका ये माना जाता है कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये अपने में समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें फिर भी बचाव करना जरूरी होता है। तो बचाव के लिए जो संक्रमित व्यक्ति है इसके संपर्क में यदि कोई बच्चा आता है तो उससे उसको न जाने दें। बच्चों को कोशिश करें कि फ्रिज का ठंडा पानी है या ठंडी चीजों का जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या फिर फास्ट फूड या जंक फूड है, इन लोगों को जो आज बच्चे खाने लगते हैं, इसको अवॉइड करें, नहीं दें बच्चे को, और ज्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरी एक बीमारी बहुत ही कॉमन है, खांसी। जो बच्चों में सामान्य रूप से खांसी ये वायरस के कारण होती है। कभी कभी बच्चे कुछ निगल लेते हैं या फिर गले में कुछ फंस जाता है तब भी खांसी आने लगती है। बारिश के मौसम में बच्चे अक्सर भीग जाते हैं तो शरीर में नमी रहने से वायरस है और बैक्टीरिया जो है शरीर में पनपते हैं, जिससे भी इसके कारण भी खांसी शुरू हो जाती है। इसके बचाव में क्या करना चाहिए कि बच्चे को बारिश में न भीगने दें, कोशिश करें कि नमी से बचाएं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आने दें, और बच्चे का टीकाकरण कराएं। और ज्यादा परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये छोड़ देंगे तो ये खांसी बढ़ती चली जाएगी, तो और ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसके बाद एक और बीमारी जो बहुत ही कॉमन है, सर्दी जुकाम। बारिश के मौसम में बच्चों में खास तौर से हो जाती है। ये बच्चे क्या करते हैं कि बारिश वगैरह होता है तो बाहर खेलने चले जाते हैं, या फिर उसकी वजह से शरीर में नमी रहती है क्योंकि उमस भरा मौसम रहता है। तो सर्दी जुकाम या फिर के बैक्टीरिया जो है ये उमस के कारण जो सर बदन चिपचिपा हो जाता है उसमें ये बहुत इनके बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कई तरह के जो वायरस होते हैं वो भी जुकाम का कारण बन सकते हैं। इनके लक्षणों में क्या होता है कि बच्चों को बंद नाक है, बुखार है, खांसी है, शरीर में दर्द होना, या आंख से कभी कभी पानी भी आने लगता है, ये सब इसके लक्षण होते हैं। इसके बचाव में देखा जाए तो जो सर्दी जुकाम है ये भी सेल्फ लिमिटिंग है। 10 दिन के अंदर जो है अपने आप धीरे धीरे इसके लक्षण कम होने लगते हैं। फिर भी बच्चे को बारिश में नहीं भीगना देना चाहिए। यदि बच्चा छोटा है तो उसके डायपर को बदलते रहें और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने दें। बच्चे को पर्याप्त पानी पीने को देना चाहिए, बच्चे को आराम करने दें भरपूर, और यदि इसके बाद भी नहीं ठीक होता है तो फिर डॉक्टर से उचित परामर्श लेके उसका इलाज करना।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय था बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियां और बचाव के उपाय। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्रीराम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों की स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे वाणी जयराम और श्रीकांत परगांवकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 10:30, सुबह 7:31 और दिन 12:45 पर आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे डॉक्टर राम शंकर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे परिचर्चा। गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हमले करेंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:31 पर रसरंग में, 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में, शाम 6:10, शाम 7:00, शाम 5:00 और सुबह 10:00 कार्यक्रम झनकार में। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8:00 आप सुनेंगे पंडित सीताराम सिंह की गाई गजलें। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:30 पर आप सुनेंगे कुमार अमरीश।

चंचल के भजन। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे दिन 5:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत हम लेकर आएंगे शाम 6:30 पर, जिसमें आज की बातचीत का विषय होगा नागपंचमी का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। जानकारी देंगी प्रोफेसर आशा यादव। इसी में श्रोता सुनेंगे हीरालाल यादव और साथी के गाय लोकगीत। इन्हीं के गाय लोकगीतों को श्रोता सुन सकेंगे दिन 1:45 और सुबह 9:50 पर। दिन 2:30 पर भोजपुरी फिल्मों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा। दिन 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। दिन 12:00 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। दिन 11:00 आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे, आपके पत्र आपके गीत। सुबह 8:45 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे मधुरिमा। और सुबह 7:00 आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग बनारस। श्रोताओं, एक बार आपको फिर से बता दें कि शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 10:30, सुबह 7:31 और दिन 12:45 पर आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे डॉक्टर राम शंकर। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हाल चाल सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

बनारस आज है सावन का तीसरा सोमवार, साथ ही आज है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और आज के दिन नागपंचमी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। वेदों और पुराणों में नागों का उद्भव महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से माना गया है। यह भी कहा गया है कि नागों का मूल स्थान पाताल लोक है और उनकी राजधानी के रूप में भगवतीपुरी का नाम विख्यात है। संस्कृत कथा साहित्य, विशेष रूप से कथा सरित सागर, नागलोक और वहाँ के निवासियों की कथाओं से भरा पड़ा है। इसके अलावा गरुण पुराण, भविष्य पुराण, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश जैसे ग्रंथों में भी नाग संबंधी अनेक प्रकार के कथाओं का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु की

शैया के रूप में साक्षात शेषनाग हैं, भगवान शिव और गणेश जी के अलंकारों में भी नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग सिद्धि के लिए जो कुंडली शक्ति जागृत की जाती है उसको भी सर्पिणी कहा जाता है। साथ ही साथ पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है जो हर महीने में उनके रथ के वाहक बनते हैं। इस प्रकार से नाग भारतीय संस्कृति में देव रूप में स्वीकार किए गए हैं। कश्मीर के जाने माने संस्कृत कवि कल्हण ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर की संपूर्ण भूमि को नागों का ही अवदान माना है। वहां के प्रसिद्ध शहर अनंतनाग का नामकरण इसका प्रमाण है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कम्बल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया, इन 9 नागों के नाम से आज के दिन इनकी पूजा की जाती है। बनारस भारत एक धर्म प्राण देश है। भारतीय चिंतन मनुष्य के साथ ही जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और कीट पतंगों जैसे प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करता है और उनके लिए आत्मीयता और दया भाव को विकसित करता है। पर्यावरण की रक्षा और वन संपदा में भी नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नाग पंचमी का त्योहार नागों के साथ जीव मात्र के प्रति सम्मान और उनके संरक्षण की प्रेरणा देता है। ये पर्व प्राचीन काल में जितना महत्वपूर्ण था आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। बनारस, कभी कभी कोई व्यक्ति किसी देश में आता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस देश की भाषा, संस्कृति और साहित्य का इतना अभिन्न हिस्सा बन जाता है कि लोग उसे अपना ही मानने लगते हैं। फादर कामिल बुल्के की कहानी कुछ ऐसी ही है। बेल्जियम में जन्मे इस विद्वान ने भारत आकर हिंदी और भारतीय संस्कृति को अपना जीवन समर्पित कर दिया। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर 1909 को बेल्जियम के रैम्स कैपल में हुआ था। भारत में मिशनरी कार्य करने की इच्छा उन्हें 1935 में भारत ले आई। यहाँ पहुँचने के बाद वे कुछ समय दार्जिलिंग में रहे और फिर गुमला में अध्यापन करने लगे, और यहीं उनका हिंदी से गहरा परिचय हुआ। उन्होंने तय किया कि वे केवल हिंदी सीखेंगे नहीं, बल्कि हिंदी और भारतीय परंपरा को गहराई से समझेंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में शोध किया। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1974 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। फादर कामिल बुल्के के कार्य पर और भी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं काशी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और समालोचक डॉक्टर राम सुधार सिंह। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं।
1: फादर कामिल बुल्के जो हिंदी और भारतीयता के पुजारी थे, इन्हें याद करना, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना हिंदी और भारतीयता को नमन करने जैसा है। मैं इस अर्थ में अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि रांची में मुझे स्वयं फादर कामिल बुल्के से मिलने और बात करने का अवसर मिला। भारत आने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यहाँ हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, फिर भी यह उपेक्षित है। और आपको बताऊं कि उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रवादी विचारों को पूरे देश में फैलाने में हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उसे इतना महत्व नहीं मिल पा रहा था जितना अंग्रेजी का है। फादर कामिल बुल्के को लगा कि भाषा के संबंध में यहाँ भी बिल्कुल उनकी जैसी स्थिति थी। तो जो रामकथा पर शोध कार्य किया, आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। पूरे विश्व में जहां जहां राम

0: कथा है, केवल वाल्मीकि और तुलसी की बात नहीं है, पूरे विश्व में जहां जहां और राम कथा का विकास कैसे हुआ, बौद्ध धर्म में, जैन कथाओं में, वाल्मीकि रामायण में, आगे जाकर के भारतीय भाषाओं में, जो तमिल का जो कंब रामायण है, कृतिवास रामायण बंगाल का है, असमिया का रामायण है, सारे जितने रामायण थे देश भर के, सबका उन्होंने अध्ययन किया और रामायण का उन्होंने विस्तार किया था। तो रामकथा पर इतना बड़ा काम और किसी ने नहीं किया जितना कामिल बुल्के ने किया है। मैं जब उनसे मिला तो वो बनारस को बहुत शिद्दत से याद कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि एक बनारस का विद्यार्थी मेरे पास बैठ करके बात कर रहा है। और वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को और नागरी प्रचारणी सभा को, नागरी प्रचारणी सभा को के योगदान को याद करते समय वो उनकी आंखें जैसे भर आई थी। फादर कामिल बुल्के की एक बड़ी इच्छा थी कि अपने जीवित रहते वो विनय पत्रिका पर कुछ काम करें, अलग से ग्रंथ लिखें। तुलसी पर उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। मैंने पूछा था कि सर विनय पत्रिका पर आप क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक पद उद्धृत किया था विनय पत्रिका का, कबहू कहाँ यही रहन रहोगे और रघुनाथ कृपाल कृपा से संत स्वभाव कहोगे। उनके तुलसीदास लिखते हैं कि हे भगवान आपकी कृपा से मैं संत का स्वभाव कभी पा सकूंगा, और फिर संतों के लक्षण देते हैं तुलसीदास। तो वो एक सन्यासी के रूप में कामिल बुल्के की यह इच्छा थी कि मैं विनय पत्रिका पर काम करते हुए शायद संत स्वभाव पा सकूं। फादर कामिल बुल्के हिंदी और भारतीयता के पुजारी, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं के प्रति मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राम सुधार सिंह को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बनारस आइए, अब चलते हैं प्रोग्राम में आगे और जान लेते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल चाल। बनारस सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के खास मौके पर श्री काशी विश्वनाथ का अर्धनारीश्वर श्रृंगार किया जाएगा। चल प्रतिमा बाबा के गर्भगृह में रखी जाएगी। पुजारियों द्वारा ज्योतिर्लिंग समेत श्रृंगार आरती की जाएगी। शयन आरती तक भक्तों को बाबा के इस आकर्षक रूप की झांकी का दर्शन मिलेगा। आज भोर में भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई। यहीं गंगा द्वार के अलावा बाकी सभी 6 द्वारों से मंदिर में प्रवेश और बाहर जाने की व्यवस्था की गई है। विश्वनाथ गली व्यावसायिक संघ की ओर से भी विश्वनाथ जी का जलाभिषेक आज किया जाएगा। शिव के दरबार में महिला कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुरक्षा और सुविधा को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि सभी कांवड़ मार्गों पर महिला पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिला पुलिस कांस्टेबल्स की भी तैनाती की गई है। गोदौलिया से मैदागिन तक आज सभी वाहन प्रतिबंधित हैं। वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क गोल्फ कोर्ट का व्यवस्था की गई है। धूप बारिश और उमस से राहत देने के लिए मार्गों और कतारों में अतिरिक्त शेड लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए कतारों में इंडस्ट्रियल एयर कूलर, आरओ पेयजल, ORS समेत अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ शिवपुर से विशाल शोभा यात्रा लेकर विश्वनाथ मंदिर के लिए निकले शिवपुर कांवरिया संघ को पुलिस ने जगतगंज संस्कृत विश्वविद्यालय के पास रोका, जिसकी वजह से वहां पर लंबा जाम कल शाम को लग गया था। लेकिन इसके साथ ही साथ बनारस से बहुत सारे श्रद्धालु सारंगनाथ महादेव, मार्कंडेय महादेव, त्रिलोचन महादेव और जागेश्वर महादेव जैसे मंदिरों में जाकर आज जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। काशी में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। रविवार को लंका, BHU, कैंट, रामनगर, डाफी, सामने घाट, अस्सी और सुंदरपुर इलाकों में दोपहर 12 बजे के बाद अचानक घने बादल छा गए और करीब 1 घंटे तक तेज और लगातार बारिश हुई। दूसरी ओर गोदौलिया, सिगरा, मंडुआडी और पांडेपुर इलाकों में हल्की फुल्की बारिश दर्ज की गई और इसके साथ 72 घंटों में 1.74 मीटर गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है और गंगा का घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। तो बनारस ये था अपने शहर बनारस का हाल चाल और अब चलते हैं आगे और देख लेते हैं बातें गुजरे हुए कल की। और अब बातें गुजरे हुए कल की। तो बनारस आपको बता दें कि आज ही के दिन वर्ष 1909 में महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा को करजन वायली नामक अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में पेंटोन वैली जेल में फांसी दे दी गई थी। उन्होंने अदालत में खुले शब्दों में कहा कि मैं अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर रहा हूँ। उनके स्मरण में वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया। बनारस आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध साहित्यकार वी एस नायपॉल, अमृतलाल नागर और अनामिका की। साथ ही आज है पुण्यतिथि बिहार के माउंटेन मैन नाम से विख्यात दशरथ मांझी और मेवाती घर

हरियाणा के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज की। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था। आपकी गायकी का जादू इस तरह हावी हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय खगोली संघ ने 2006 में खोजे गए एक नए ग्रह का नाम ही पंडित जसराज रख दिया। बनारस के साथ आपका अटूट संबंध था। पंडित किशन महाराज और पंडित राजन साजन मिश्र से आपके घनिष्ठ संबंध तो थे ही, साथ ही श्री संकट मोचन संगीत समारोह में आपकी अटूट आस्था थी। वे इस कार्यक्रम में अक्सर रात के तीसरे पहर में मंच पर आसीन होते थे और सुबह की आरती तक सबको अपने सुरों के मुहपाश में बांध कर रखते थे। इसी संकट मोचन संगीत समारोह ने उन्हें जसराज से रसराज बनाया। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम और वज्र देह श्री हनुमान लला को सुकुमार लला पंडित जसराज जैसा कोई भक्त हृदय ही कह सकता था। इस समारोह में अक्सर अपने गायन का समापन वे स्वरचित इस पद से ही करते थे, तो आइए आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें उनके ही पद से हम अपनी भाव कुसुमांजलि समर्पित करते हैं।

0: और आइए बनारस अब चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है
1: काशी कथा।
0: जी हाँ, काशी कथा। बनारस कहा जाता है कि भगवान शिव जब काशी आए तो अपनी इसी समता भाव की आदत के अनुसार सभी देवी देवताओं को उनके योग्यता के अनुसार स्थान दिया और इसी क्रम में भूत प्रेत आत्माओं को महाश्मशान तो अपने गले में विराजमान नाग देव को नागकूप का स्थान दिया। काशी खंड में काशी में 6 प्रकार की वापियों या कूपों का वर्णन मिलता है। इसमें पहली वापी ज्ञान वापी और छठी वापी करकोटक वापी है जो जैतपुरा में स्थित है। आज के दिन काशी में इसी करकोटक वापी या नागकूप यात्रा की परंपरा रही है। सप्तनागों में करकोटक प्रमुख माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार करकोटक महर्षि पतंजलि के रूप में जाने जाते थे और वे शेष नाग के अवतार थे। जैतपुरा स्थित करकोटक वापी को पतंजलि की सिद्ध तपोभूमि माना जाता है और कहा जाता है कि वे यहीं पर ग्रंथों की रचना करते और समीप में ही देवी बागेश्वरी का पूजन करते थे। महर्षि पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी और महर्षि कात्यायन के ग्रंथ वार्तिक पर महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्यम नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ व्याकरण शास्त्र की परंपरा का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और इस स्मृति परंपरा को ध्यान में रखकर आज से करीब 100 वर्षों पूर्व यहाँ पर नागपंचमी के दिन शास्त्रार्थ की परंपरा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। रहस्यों से भरा यह नागकूप ऊपर से देखने में एक वर्गाकार कुंड जैसा लगता है, लेकिन जब इसमें से पानी निकाल दिया जाता है तो अंदर एक कुआं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिसमें लगभग 30-35 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनसे नीचे उतर के जाने पर वहां नागकूपेश्वर महादेव हैं, जिनकी पूजा की जाती है और मान्यता है कि वहीं से एक रास्ता नागलोक तक जाता है। पूरे विश्व में भगवान शिव का अभिषेक रुद्राष्टाध्यायी से तो नागकूप स्थित नागकूपेश्वर महादेव का महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से बिल्वार्चन किया जाता है। ऐसी ही मान्यता है कि यहाँ के कूप में स्नान करने से काल सर्प के दोष का शमन होता है। बनारस, हमने अपने बचपन में अक्सर बड़े गुरु का छोटे गुरु का नाग लो भाई नाग लो ये सुना है, तो आपको यहाँ बता दें कि महामुनि पाणिनि ही बड़े गुरु हैं और महर्षि पतंजलि छोटे गुरु हैं। नाग पंचमी के अवसर पर बनारस में विभिन्न स्थानों पर कुश्ती और जोड़ी फेरने की प्रतियोगिताएं होती हैं और आज के दिन लोग नागों के चित्र खरीदकर उन्हें अपने घरों में दीवारों पर चिपकाते और उनका पूजन करते हैं। आज के दिन बंगाली समाज मनसा देवी की पूजा करता है और अन्य स्थानों पर भी मनसा देवी की पूजा करने का विधान रहा है। तो ये था काशी कथा का आज का अंक।

0: कथा।
1: और बनारस के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो गया, तो दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। श्रद्धा और हर्षोल्लास के वातावरण में पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा नागपंचमी का त्यौहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का किया आह्वान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। अब समाचार विस्तार से। नागपंचमी का पर्व आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक तरीके से श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव से कामना की है कि प्रत्येक घर आंगन आनंद शांति और खुशहाली से आलोकित रहे। उन्होंने नागपंचमी को प्रकृति के प्रति श्रद्धा सह अस्तित्व और शिवत्व का संदेश देने वाला पावन पर्व बताया है। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पर्व के कारण प्रदेश भर के शिव मंदिरों में आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर जय घोष करते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्त श्रद्धालु अपने घरों में आज भगवान

0: शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बीच वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कल से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ पहुंची है।
1: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज के जिलों और राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। सावन सोमवार को शिव पूजन जबकि नागपंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रदेश भर में श्रद्धालु और कांवड़ियों की सुविधा एवं सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संभल, एटा और बिजनौर सहित कई अन्य जिलों में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 12वीं तक के सभी विद्यालयों में आज के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं पीलीभीत जिले में सावन के सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पूरे राष्ट्र ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भावना के साथ निरंतर कार्य करते रहे।
2: भारतीय राजनीति के वे एक अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय सीट से देश की संसद के लिए चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने 5 बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की संसद में नेता विरोधी दल के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपने सुशी शासन का लोहा मनवाया हो।
0: स्वर्गीय वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के केजीएमयू साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में अटल स्मृति संध्या का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर ने काव्य पाठ किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवंतीबाई का आदर्श लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए बदायूं में वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर पीएससी की नई वाहिनी का गठन किया गया है।
3: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पीएसी बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, इन 3 पीएसी महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो भेद था उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था।
0: सिद्धार्थनगर जिले में सांसद जगदम्बिका पाल ने वीरांगना अवंतीबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को उनके द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ जितेंद्र सिंह ने कल वर्चुअल माध्यम से भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए अनुसंधान सोसाइटी के डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मधुमेह जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी विश्वास का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण भारत में मधुमेह की बढ़ती बीमारी से बचाव के लिए समुदाय, तकनीकी और आंकड़ों पर आधारित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने दूध और दुग्ध उत्पादों जैसे खोआ, पनीर, घी आदि में स्वास्थ्य के लिए घातक हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं।

0: आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी डेयरी या डेयरी उत्पाद की विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई में हानिकारक रसायन अथवा अपमिश्रक पाए जाने पर संबंधित निर्माण इकाई को तत्काल बंद करने तथा समस्त दुग्ध उत्पादों को जब्त करने के साथ साथ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। इसके अतिरिक्त मिलावटी ब्रांड्स की बिक्री पर प्रदेश व्यापी रोक लगाकर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण और विक्रय उनकी मूल प्रकृति एवं निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार कल तक इन उत्तरों को

विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार कल तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी कल ही है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए यूपी T20 लीग सीजन 4 के मुकाबले में काशी रुद्रास की टीम ने कानपुर सुपरस्टार्स की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। हमारे लखनऊ प्रतिनिधि ने बताया कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कानपुर सुपरस्टार्स ने 163 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाबी बल्लेबाजी में काशी रुद्रास की टीम ने 18.1 ओवरों में 2 विकेट पर 167 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाराबंकी में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। सभी नाविकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। इस बीच चित्रकूट जिले में रामघाट पर मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने राज्य में कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका के प्रति भी लोगों को सतर्क किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धा और हर्षोल्लास के वातावरण में पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा नागपंचमी का त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का किया आह्वान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गायन। आज के कलाकार हैं डॉक्टर राम शंकर, राग हैं शिवमत भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अजीत कुमार श्रीवास्तव और हारमोनियम पर इनके साथ साथ दे रहे हैं मोहित साहिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गायन। आज के गायक कलाकार थे डॉक्टर राम शंकर, राग था शिवमत भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अजीत कुमार श्रीवास्तव और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे मोहित साहनी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन

0: दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
3: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक

0: प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17-17 या 23-71-71-06 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उड़ीसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोकाटाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया

0: टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा, पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। पांच बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित सात राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना 8 से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir, and BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
3: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demographic composition, education, economic activity, migration, disability, language, fertility and other population characteristics. Census 2007 is being conducted digitally with housing listing operation completed from June 1st to 30. The first phase achieved 100% digital data collection. Yangchan Dolma for Akashwani from Lelata.
2: The National Testing Agency NTA has announced retests for 3 papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. NTA said the English paper will be held on 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1, while the commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m. in shift 2. The sociology paper will be held on 10th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1. The NTA had conducted the UGC NET June 2026 examination from 22nd to 30th of June across 87 subjects for the award of Junior Research Fellowship eligibility for assistant professor

0: the immediate crisis of jobs. The paper elaborates that, like every such address from the ramparts of the Red Fort over the past 8 decades, Prime Minister Narendra Modi's speech to mark the 80th Independence Day combined a short-term actionable roadmap with the long-term path that the country should embark on. And finally, in a world record and Guinness feat, the Asian Age writes that 3 UAE-based Indians were among 65 skydivers who jumped from an aircraft at an altitude of 13,000 feet, each carrying their respective national flag, making it to the Guinness World Records. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर, पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मर्दुम शुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए 3 मजामीन इंग्लिश कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए यूजीसी नेट इम्तिहानात दोबारा मुनक़िद कराएगी। झारखंड में एहतजाज कराने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात आईएमडी ने ओडिशा गंगोत्री मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू होगी और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में सितंबर के महीने में मर्दुमशुमारी 2027 के दूसरे मरहले के तहत आबादी के इंदराज का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल आज से खुद इंदराज का अमल शुरू हो रहा है। ये मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में आज से शुरू होकर 31 अगस्त तक जारी रहेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: लद्दाख मुल्क में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम ऐसा पहला इलाका बन जाएगा जहां 1 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान आबादी के इंदराज का अमल के साथ ही मर्दमशुमारी 2027 का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। खुद इंदराज के अमल आज से शुरू हो रहा है। लद्दाख में मुकम्मल कवरेज के लिए तकरीबन 637 इंदराज के ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए मर्दमशुमारी के ऑपरेशन से मुतालिक अफसर अमित शर्मा ने बताया कि इस खित्ते में मौसम सरमा की सख्त सूरत हाल, मुश्किल रास्तों और लद्दाख तक महदूद रसाई की पेश नज़र सितम्बर के शेड्यूल का मनसूबा बनाया गया था। मर्दमशुमारी 2027 डिजिटल तरीके से की जा रही है। मकानात की फहरिस्त साजी का अमल यकुम जून से 30 जून तक मुकम्मल कर लिया गया था। लेह लद्दाख से यंगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
2: जम्मू कश्मीर के बर्फानी इलाकों में डिजिटल तरीके से खुद इंदराज का अमल आज से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। ये आने वाली मर्दमशुमारी के आबादी का इंदराज के अमल का हिस्सा है। हमारे जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि आज से मखसूस इलाकों में रिहायशियों को डिजिटल इंदराज के अमल के जरिए अपनी तफसीलात दर्ज कराने की सहूलत फराहम की जाएगी। ये सहूलत जम्मू कश्मीर के 1115 गांव और 3 म्यूनसिपल्टियों उरी, गुलमर्ग और किश्तवाड़ के लोगों के लिए दस्तियाब होगी। मर्दमशुमारी के चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर अमित शर्मा ने कहा है कि हुक्काम इस मुहिम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने आबादी के इंदराज के अमल को मर्दमशुमारी का सबसे अहम मरहला करार दिया है। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट इम्तिहान के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के 3

0: पेपर का दोबारा टेस्ट कराने का ऐलान किया है। इन तीनों पेपरों का इम्तिहान इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इन पेपरों में बहुत सी गलतियों के बारे में शिकायत मौसूल हुई थी। एनटीए ने कहा है कि इंग्लिश का पेपर एक शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 9 सितंबर को कराया जाएगा, जबकि उसी रोज़ कॉमर्स का पेपर 2 शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा और सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कराया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एहलियत और पीएचडी प्रोग्राम्स के दाखिले के लिए 87 मजामीन में 22 से 30 जून तक यूजीसी नेट 2026 के इम्तिहानात मुनाकिद कराए थे। एनटीए ने एक कमेटी तश्कील दी है ताकि इन गलतियों की इंक्वायरी की जा सके। कमेटी ने सिफारिश की है कि एक मुनसिफाना और गलतियों से मुबर्रा इम्तिहान के मफाद में इन तीनों पेपरों का इम्तिहान दोबारा कराया जाना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों का एहतजाज आज 24वें दिन में दाखिल हो गया है। तलबा भर्ती के इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों पर अपना एहतजाज तेज कर रहे हैं। हुकूमत और तलबा के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का ताजा दौर आज शुरू हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जेपीएससी जेएसएससी तलबा ने कल रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक एहतजाज मार्च निकाला और वजीर आला हेमंत सोरेन, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के पुतले नजर आतिश किए। तलबा ने रियासती सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की और भर्ती के अमल में मुबैना बेजाबतगियों जेपीएससी और जेएसएससी के इम्तहानात को मनसूख किए जाने की अपनी मांग को दोहराया और भर्ती के इम्तहानात में बेजाबतियों की सीबीआई जांच की मांग की। इसी दौरान रियासती सरकार ने मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल करने की अपनी एक और कोशिश का आगाज किया है और इस सिलसिले में आज दोपहर 2 बजे मुजाहरा करने वाले तलबा को बातचीत के लिए मधु किया है। तलबा को अपने कानूनी मुशीरों के साथ बातचीत में शामिल करने की भी इजाज़त दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा है कि अगर सरकार तलबा की मांगें पूरी करती है तो एजिटेशन खत्म करने की जानिब इकदाम किए जा सकते हैं, वरना एहतजाज जारी रहेगा। तलबा ने 20 अगस्त को वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने का पहले ही ऐलान कर दिया है, लेकिन कतई फैसला देवेंद्र नाथ महतो की सेहत और आज की बातचीत के नतीजे पर मुनसिर होगा। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि उसकी विशाखापट्टनम की तमाम परवाजें आज से भोगापुरम में वाकई अलूरी सीताराम राजू बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से चलाई जाएंगी। एक प्रेस रिलीज में एयर इंडिया ने बताया कि वो भोगापुरम और दिल्ली के दरमियान हफ्तेवार 14 परवाजें जारी रखेगी। 77,342 मुरबा मीटर पर मुहित ये नया टर्मिनल मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करता है। हुकूमत ने कहा है कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत अब तक 18.66 लाख करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ मुख्तलिफ वजारतों के बुनियादी ढांचे के 396 प्रोजेक्टों को मंजूर करने के लिए सिफारिश की गई है। इसके लिए कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इन प्रोजेक्टों में 256 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है और इनमें से 198 प्रोजेक्ट जेर नफाज हैं। उसने मजीद कहा है कि इन प्रोजेक्टों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG मैकेनिज्म के जरिए कदरों कीमत का अंदाजा लगाया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मगरबी बंगाल के गंगोत्री और उड़ीसा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी इस तरह के हालात रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश का इम्कान है। उसने ये भी कहा है कि अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजीरे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है, जबकि इसी तरह के हालात मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में भी रहने की पेशगोई की है। उड़ीसा में शदीद बारिश का इम्कान है क्योंकि आज खलीज बंगाल के ऊपर हवा का कम दबाव और शदीद हो सकता है, जिससे शिमाली जिलों में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा है। महकमे मौसमियात IMD ने 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और शिमाली उड़ीसा में कई मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है।

0: दरियाओं में तुगयानी और लाखों लोगों के मुतासिर होने के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने राहत कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। वज़ीर आला मोहन चरण मांझी आज सैलाब से मुतासिरा भद्रक और जाजपुर जिलों का फजाई जायजा लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल खराब है। कई शुमाली जिलों के इलाकों में पानी भर गया है। रियासती हुकूमत ने मुतासरा जिलों में अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और 3 IAS अफसरान को तैनात किया है ताकि भद्रक, बालासोर और जाजपुर में राहत और बाजाबाद कारी के काम में तालमेल बरकरार रखा जा सके। एहतियाती कदम के तौर पर मयूरभंज, केवनझार, भद्रक, जाजपुर और बालासोर में आज स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो कल तक समुद्र में ना जाएं। बालासोर जिले के जालेश्वर में 2 अफराद की मौत हो चुकी है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: पूंछ जिले में मंडी तहसील के राजपुरा गांव में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए 12 दिन तक चलने वाली सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दौरान शुरू होगी। ये यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी और रक्षाबंधन को इख्तिताम पजीर होगी। हुकाम ने पूंछ, राजौरी और राहदारी रास्तों पर सख्त कसीर सतही सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी है। ये यात्रा पूंछ जिले के मंडी तहसील में राजपुरा गांव में वाकई भगवान शिव के कदीम बुद्ध अमरनाथ मंदिर में श्रावण के मानसून पवित्र महीने के दौरान हर साल मुनाकिद होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के आज सुबह पूंछ के सरहदी जिले की जानिब जम्मू में भागवती नगर यात्री निवास से यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। राजौरी और पूंछ के सरहदी जिलों के राहदारी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी ऑपरेशन ग्रुप के दस्ते दशनमी अखाड़ा जैसे ठहरने के मकाम के नज़दीक तलाशी और तस्दीक की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। अकीदतमंदों के दस्ते पुलिस मुहाफिजों की निगरानी में पेश कदमी करेंगे। जिला इंतजामी और मकामी इदारों ने वाटर प्रूफ खेमों और कम्युनिटी किचन, पार्किंग और हिफ्जान सेहत मकाम समेत सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। खवातीन के सिंगल्स में दुनिया की साबिक चैंपियन और 9वें दर्जे की खिलाड़ी पीवी सिंधु आयरलैंड के सूफिया नोबेल का सामना करेंगी, जबकि खवातीन के डबल्स में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले राउंड में स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिक्स का मुकाबला करेंगी। शाम में भारत के आयुष शेट्टी मर्दों के सिंगल्स के जुमरे में चीन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन और शीक यूकी के खिलाफ खेलेंगे। मर्दों के डबल्स के जुमरे में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी पहले ही एक बाय हासिल करने के बाद दूसरे राउंड में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के खिलाफ गाले बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी पहली इनिंग का दोबारा आगाज करेगा। भारत ने कल के खेल के अख्तितम पर 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव अभी क्रीज पर ही हैं। इससे कबल देवदत्त पुडिकल ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए 167 रन का स्कोर किया, जबकि KL राहुल ने 82 और ध्रुव जुवेल ने 51 रन का शानदार स्कोर किया। मर्दों की हॉकी में आज नीदरलैंड्स में वाग्नेर हॉकी स्टेडियम में भारत की टीम सेकेंड पूल के डी के अपने मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। इसका मकसद FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे गुमराह कुन लेबलिंग और सारिफीन के हुकूक से मुतालिक बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामईन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं। ये नंबर्स हैं 011-233-10481, 011-2371-7117, 011-2371-7106। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 अता करेंगे। अमले अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत ने कहा है कि अवार्ड्स की तकसीम से मुतालिक तकरीब में पेंशन मित्र से मुतालिक किताबचा और मुल्क की सतह पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

दोस्तों, आप सुन रहे हैं मधुरिमा और आज का ये कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं, यानी आपकी रेडियो हम सफर नीलू तिवारी। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज

है सोमवार, यानी सावन का तीसरा सोमवार, और आज है नागपंचमी। तो सभी श्रोताओं को सबसे पहले तो शुभकामनाएं हमारे पर्व नागपंचमी की। दोस्तों, बारिश की पहली बूंद जब सूखी धरती पर गिरती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं महकती, महक उठती है यादें भी। कहीं आंगन में झूला पड़ता है, कहीं हाथों में मेहंदी सजती है, कहीं सखियां सावन के गीत गाती हैं और कहीं मंदिर की घंटियों के बीच भोलेनाथ के जयकारे सुनाई देते हैं। और जब सावन का सोमवार हो तो इस मौसम की खूबसूरती में भक्ति का रंग भी घुल जाता है। और आप इस वक्त सुन रहे हैं मधुरिमा, अपनी रेडियो हम सफर नीलू तिवारी के साथ, और आज हम बात करेंगे सावन की फुहार और यादों के संगीत के बारे में। एक ऐसा सफर जहां बारिश होगी, यादें होंगी, रिश्तों की मिठास होगी, सावन की कजरी होगी और साथ होंगे हिंदी सिनेमा के वो खूबसूरत गीत जो हमारे सावन को और सुरीला बनाए जाते हैं। तो आइए बारिश की इस रिमझिम में कुछ पल के लिए सारी भागदौड़ भूल जाते हैं।

दोस्तों, पेड़ों की पत्तियां जैसे ताल देती हैं, बादल जैसे संगीत छोड़ते हैं, और बारिश की बूंदें जैसे उस संगीत पर घुंघरू बनकर थिरकती हैं। सावन की सबसे खूबसूरत बात यही तो है कि ये सिर्फ मौसम नहीं बदलता, ये हमारे भीतर का मौसम भी बदल देता है। जो मन कल तक उदास था, आज वही खिड़की के बाहर गिरती बारिश देखकर मुस्कुरा देता है, और कभी कभी कोई पुराना गीत किसी पुराने सावन की पूरी कहानी वापस ले आता है। याद कीजिए अपना बचपन, बारिश शुरू होते ही कागज की नाव बनाना, बारिश की बूंदों को हथेली पर रोकना, पेड़ के नीचे खड़े होकर भीगना, और घर से आवाज आना कि बस अब अंदर आ जाओ। कितना छोटा था वो संसार, लेकिन खुशियां कितनी बड़ी थी। आज हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन शायद वो बेफिक्री कहीं पीछे छूट गई है। इसलिए सावन जब आता है तो वो सिर्फ पानी नहीं बरसाता, वो हमें हमारे बचपन से भी मिलाता है।

दोस्तों, सावन का रिश्ता सिर्फ बारिश से नहीं, यादों से भी है। किसी को माँ की याद आती है, किसी को मायके का आंगन, किसी को सहेलियों के साथ लगाए झूले, तो किसी को वो पुराना शहर जहाँ बारिश की खुशबू आज भी मन में बसी है। हमारे उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल की धरती पर तो सावन का अपना ही रंग है। सावन आते ही कजरे की धुन मन को छूने लगती है। कहीं सखियां गाती हैं, कहीं झूले पड़ते हैं, कहीं हरियाली तीज की तैयारी होती है और कहीं घर के आंगन में मेहंदी की खुशबू फैल जाती है। सावन का मतलब ही है हरियाली, और शायद इसलिए सावन में विरह भी मीठा लगता है और मिलन भी। और सावन में अब करते हैं भोलेनाथ को याद।

दोस्तों, आज है सावन का सोमवार और नागपंचमी भी है, तो इस खूबसूरत मौसम में महादेव की याद अपने आप चली आती है। भोलेनाथ का स्वभाव भी कितना सरल है कि ना बड़े महलों की जरूरत, ना दिखावे की, बस सच्चा मन चाहिए। इसलिए आज अगर आपके मन में कोई चिंता है, कोई अधूरी इच्छा है, या जीवन का कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो कुछ पल शांत बैठिए, मन में कहिए, हे महादेव, मैंने या मेरे रास्ते में या जो भी आपने दिया है, उन सबको आसान करने से पहले उन रास्तों पर चलने की शक्ति दीजिए। शायद यही सच्ची प्रार्थना है।

दोस्तों, बारिश की ये बूंदें अब शायद थमने लगी हों, लेकिन आज की हमारी बातें आपके मन में कुछ देर और बरसती रहें। और सावन हमें याद दिलाता है कि सूखी धरती भी फिर हरी हो सकती है, थका हुआ मन भी फिर मुस्कुरा सकता है, और बीती हुई यादें भी कभी कभी वर्तमान को खूबसूरत बना सकती हैं। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी गर्मी हो, अपने भीतर सावन बचाकर रखिए। किसी के लिए उम्मीद बनिए, किसी के लिए मुस्कान बनिए, किसी रिश्ते में मिठास बनिए, और जब मन बहुत थक जाए तो महादेव का नाम लेकर बस इतना कहिए कि जो मेरे लिए अच्छा है वही मेरे जीवन में बनाए रखिए, और जो मेरे लिए नहीं है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज मधुरिमा समाप्त करने की दीजिए अपनी रेडियो हमसफर नीलू तिवारी को अनुमति। अगली मुलाकात तक सावन की फुहारों को महसूस करते रहिए, रिश्तों को प्यार से सींचते रहिए, और अपने भीतर की खुशियों को बचाए रखिए, और महादेव पर विश्वास बनाए रखिए। नमस्कार।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीर नगर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
1: संत कबीर नगर जिले में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री एवं जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान विधायक खलीलाबाद अंकुराज तिवारी, विधायक मेहदावल अनिल कुमार त्रिपाठी और जिलाधिकारी आलोक कुमार समेत अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं व गणमान्य नागरिकों ने राष्ट्रगान के साथ अमर शहीदों को नमन किया। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। उन्होंने पुलिस कर्मियों को संविधान, देश की एकता, अखंडता और जन सुरक्षा के प्रति पूरी निष्ठा से दायित्व निभाने का संकल्प दिलाया। पुलिस लाइन व कैंप कार्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी उन्होंने संदेश दिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सेवा पदक, प्रशंसा चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए, लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने शिकायत पंजिका का निरीक्षण कर पूर्व में निर्धारित मामलों का फीडबैक भी लिया। संत कबीर नगर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह के नेतृत्व में जिला न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला जज ने अपनी माता के नाम पर पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि माँ सृजन का प्रतीक है और वृक्ष भी जीवन व सृजन का आधार है। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में सैनिक बंधु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में करीब 40 पूर्व सैनिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। डीएम ने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शहीद वीर चक्र विजेता सत्यवान सिंह के नाम से नवनिर्मित सभागार का फीता काटकर उद्घाटन किया। संत कबीर नगर में भूजल सप्ताह के तहत जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से भूजल संरक्षण जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि भूजल संरक्षण आज प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। वर्षा जल संचयन को अपनाने, तालाबों और जलाशयों को स्वच्छ रखने तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने की जरूरत है। संत कबीर नगर में पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने बीते दिनों कारागार स्थित महिला बंदी गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। अध्यक्षा ने महिलाओं की सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। संत कबीर नगर में संभावित बाढ़ एवं तटबंधों के कटान से बचाव को लेकर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। एडीएम ने सभी तटबंधों पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत चौपाल, शिविरों की व्यवस्था, बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन, नौकाओं का सत्यापन, विद्युत व्यवस्था मजबूत करने और आपातकालीन रास्तों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। संत कबीर नगर पहुंची प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री ग्राम विकास विभाग

0: विभाग विजय लक्ष्मी गौतम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। प्रभारी मंत्री ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बीते दिनों संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरक, पाकशाला, अस्पताल और महिला बैरक का जायजा लेते हुए साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता तथा बंदियों की समस्याओं की जानकारी ली। संत कबीर नगर में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कोपिया शिव मंदिर स्थित झारखंडी शिव मंदिर और बाबा कुबेरनाथ शिव मंदिर बखिरा का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, यातायात, सड़क सुरक्षा और कांवड़ यात्रियों के आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों को कांवड़ मार्गों पर सतर्क निगरानी और नियमित भ्रमण के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने को कहा गया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिले में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
1: 30 जुलाई से 28 अगस्त तक पवित्र श्रावण मास का महीना है, जिसमें श्रद्धालुगण कांवड़ लेकर नदियों से, घाटों से जल भरकर मंदिरों में भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संत कबीर नगर पुलिस ने प्रशासन तंत्र को मेन 3 जोन बनाए हैं, जो तीनों धनघटा, महदावल और खलीलाबाद सेक्टर। साथ ही इसमें 8 हमने सेक्टर बनाए जो हमारे थानों के स्तर पर रहेंगे। इसके अलावा हमने 31 QRT की स्थापना की, प्रत्येक थाने पर 2-2 QRT अलग से रहेगी। साथ में CCTV कैमरे से पूर्ण 30 की कांवड़ की निगरानी होगी घाटों पे, मंदिरों के अंदर और रूट पे।
2: संत कबीर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ में सावन के पावन मास में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। हापुड़ में भक्ति और आस्था का अनोखा दृश्य देखने को मिला। जिलाधिकारी हापुड़ कविता मीना और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर के जरिए शिव मंदिरों और ब्रज घाट पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। इसके अलावा जनपद की सीमाओं में कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। जनपद में छपकोली स्थित प्राचीन शिव मंदिर और ब्रज घाट गंगा घाट पर कांवड़ियों एवं शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर का भव्य स्वागत किया, जिसको देखकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालुओं द्वारा हर हर महादेव का जय घोष किया गया। कांवड़ यात्रा को प्रशासन द्वारा शिव भक्तों की आस्था और विश्वास को कायम रखते हुए सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार के निर्देश का पालन किया गया।
4: जनपद हापुड़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा की गई। उसमें प्रथम स्थल हमने छपकोली मंदिर लिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है हापुड़ का, और वहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु थे। और उसके पश्चात सेकंड स्पॉट हम लोगों ने ब्रज घाट लिया। हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत सारे कांवड़िए जल उठा रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। ऊपर से कुछ वर्षा करते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगा, पूरा भक्तिमय माहौल था।
3: सावन मास शिव भक्ति के लिए खास माना जाता है। वहीं कांवड़ियों हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा जल लेकर आ रहे हैं। वहीं जनपद हापुड़ के ब्रजघाट से भी जल लेने के लिए कांवड़िए पहुंचे और जल लेकर अपने गंतव्य के लिए पहुंचे। हापुड़ के तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट सहित हापुड़ शिवमय दिखाई दिया। वहीं कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा रहा। जनपद की सीमाओं को सील करते हुए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा जनपद में CCTV कैमरे लगवाकर कंट्रोल रूम से निगरानी की गई। गंगा तट पर नाविक और गोताखोर लगाए गए। सड़कों के एक साइड को कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया, जबकि दूसरी साइड से हल्के वाहनों को निकलवाया गया। भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया गया, ताकि किसी को कोई समस्या न हो सके।
5: कांवड़ में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बढ़िया एक रोड चल रहा है, एक रोड कांवड़ियों के लिए खाली है। वहीं से ये हमारी कांवड़ हरिद्वार से लेकर पलवल तक जाएगी।
3: जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने अस्पताल ले जाते समय पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहे 1,00,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को उपचार के बाद जेल भेज दिया गया। हापुड़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री, न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने सिंचाई विभाग में आयोजित बैठक में कहा कि नीट परीक्षा लीक होने के बाद CJP के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ है। जो छात्रों की मांगे थी उनको पूरा किया गया है। पेपर के आरोपी जेल में है। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दों पर कहा कि राम मंदिर के लिए देश और विदेश से चंदा दिया जाता है और इस तरह की घटना निंदनीय है। प्रदेश सरकार ने इस पर SIT गठित की है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में विभिन्न योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक की। पूर्व सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने के भी निर्देश दिए। जनपद हापुड़ में खाद्य विभाग ने टोडलपुर सिंभावली की तरफ से आ रही पनीर लेकर एक गाड़ी को पकड़कर पनीर के 2 नमूने संग्रहित किए गए। पनीर ड्रमों में भरा हुआ था, जो कि असुरक्षित तरीके से भंडारित था, जिसकी मात्रा लगभग 200 किलो

0: किलोग्राम थी, जिसको जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट कर दिया गया। पनीर की कीमत करीब 40,000 रुपए बताई गई है। जनपद हापुड़ के विकास भवन के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बाबूगढ़ छावनी में सिलाई प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और बालिकाओं को सिलाई किट एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किए गए। जनपद हापुड़ के मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता भी की, साथ ही उन्हें समूह से जोड़कर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जनपद हापुड़ में जनपद के प्रभारी मंत्री केपी मलिक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अटल पार्क में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों, युवाओं के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा शहीदों को श्रद्धांजलि है। बीते 14 अगस्त को आजादी के विभाजन की विभीषिका पर देश के विभाजन के समय हुए नरसंहार में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। मीडियम वेव हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार मोनी पत्नी उमा शंकर निवासी खैरुद्दीनगंज थाना मड़ियाहूं जिला जौनपुर से दिनांक 8 जून 2026 से घर से लापता है। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 34 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। ये दिमागी रूप से विक्षिप्त हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना मड़ियाहूं जौनपुर को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जिला जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार सुनीता देवी पत्नी देवचंद निवासी जगरनाथपुर थाना मड़ियाहूं जिला जौनपुर से दिनांक 11 जून 2026 से लापता है। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 34 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गेहुआ है। इनका चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना मड़ियाहूं को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जिला जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार मोनी देवी पुत्री यशवंत निवासी मकरा थाना जलालपुर जिला जौनपुर से दिनांक 17 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 28 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा और लंबाई 4 फुट 9 इंच है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना मड़ियाहूं जौनपुर को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जिला जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार खुशबू हरजन पुत्री संतोष हरजन निवासी देवचंदपुर थाना लाइन बाजार जिला जौनपुर से दिनांक 18 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 28 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना मड़ियाहूं जौनपुर को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जिला जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार चंदन यादव पुत्र स्वर्गीय सकलू यादव निवासी पारापाटी थाना चंदवक जिला जौनपुर से दिनांक 1 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 35 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना मड़ियाहूं को सूचित करें। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना

0: की परंपरा बनाएं। नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। दृष्टि के आनंद को बांटिए, जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मृतक देह कुछ नहीं खोती, नेत्रदान से मिली ज्योति।
1: उपभोक्ताओं तक
0: जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहीन को करें नेत्रदान।

का अमूल्य वरदान नेत्रहीन को करे नेत्रदान। नेत्रदान करेंगे दुनिया फिर से देखेंगे। नेत्रदान महादान जो आपको बनाता है महान।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

लाख छुपा लो सच्चाई को, जुर्म के काले पर्दों में अदल आया हो जाएगा, फिर भी दुनिया के बाजारों में।

0: रात के 1 बज रहे थे। लखनऊ की सड़कों पर एक कार रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी थी और मौसम खुशगवार था। कार में बैठे दोनों शख्स को हुकूमत ने एक खास मिशन पर भेजा था, डिटेक्टिव सैयद हसन मुस्तबा और उसका असिस्टेंट कामरान खान, दोनों हुकूमत के खुफिया शोबे और महकमाए सुरागरसा से वाबस्ता थे। हसन मिजाज का संजीदा था, बोलता कम था, सोचता ज्यादा था। इसके बरक्स कामरान तबीयत का शोख, दिल फेंक और मस्त मौला था। दोनों ने साथ ही कॉलेज से पढ़ाई की थी और एक साथ ही खुफिया डिपार्टमेंट में शामिल हुए थे। नौकरी में हसन बॉस था, लेकिन दोनों की दोस्ती आज भी कायम थी। कामरान हसन के हर हुक्म की तामील करता, उसको इज्जत देता और हसन सबसे ज्यादा कामरान पर भरोसा करता था। कभी कभी कामरान की मजाक की बातों से परेशान होता, मगर ये बातें कभी दोस्ती और भरोसे की दीवार को न तोड़ पाती थी। कार अब गोमती नदी के पुल को पार कर रही थी। कामरान अपनी तबीयत के मुताबिक अपने मुंह को ज्यादा देर बंद न कर सका और बोला,
1: क्या नसीब है मेरे, कितना आशिकाना मौसम है और साथ मिला है तो इस खड़ूस का।
2: कुछ कहा क्या तुमने?
1: अरे कुछ नहीं हुजूर, बस एक चाय पीने का मन हो रहा था।
2: बकोमत, अभी सुना मैंने तुमने क्या कहा था। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम आज मेरे असिस्टेंट हो, वरना डिटेक्टिव बन सकते थे।
1: हुजूर,

0: मैं बेगुनाह हूँ। कॉलेज में उस सायरा और नरगिस ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था, वरना मैं तो मासूम ही था।
1: मासूम? तुम्हारी असलियत मैं जानता हूँ, और वो तबस्सुम?
2: कामरान ने बेचैनी से पहलू बदला और नजरें चुराते हुए बोला,
0: अरे मोहतरम, मैं बस इतना कहूँगा कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों?
1: अच्छा कामरान, अगर वक्त में पीछे जाना पड़े तो क्या बदलना चाहोगे, क्या मांगोगे?
0: यकीन मानिए नरगिस बहुत अच्छी थी।
1: गधे कहीं के, मुझे लगा डिटेक्टिव की पोस्ट मांगोगे।
0: आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं।
2: हसन और कामरान की नोकझोंक जारी थी और कार मूसा बाग के पास पहुंच चुकी थी। कामरान ने कहा,
0: अच्छा हुजूर, अब तो बता दें हम लोग कहां और क्यों जा रहे हैं?
1: बस थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा।
2: हसन ने थोड़ी दूर जाकर एक जगह पर कार रोक दी। और बोला,
1: कामरान उतरो, यहां से हम आगे पैदल जाएंगे, कार को छिपाना पड़ेगा, साथ में पीछे रखा बैग भी ले लो।
2: हसन कार छुपाने चला गया और कामरान अकेला खड़े खड़े गाना गुनगुनाने लगा।
0: सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम को न जाए कहीं।
2: हसन कार छुपा कर वापस आया और दोनों आगे चले। मूसा बाग से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री थी जो पिछले 7-8 महीनों से बंद थी। दोनों फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे। कामरान बोल पड़ा,
0: जब आपने मुझे औजारों वाला बैग साथ रखने के लिए कहा था ना, तभी मैं समझ गया था कि आज ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब क्या हमें ताला तोड़ना है?
1: मेरा समझदार बेटा, चलो अब मुझे ताला तोड़ने दो।
2: कामरान ने बैग से ताला तोड़ने का बड़ा औजार निकाला और हसन ने पल भर में ताला तोड़ दिया। लावाली में कामरान ने पूरी ताकत के साथ भारी गेट को धक्का दिया, जिसकी आवाज पूरी फजा में गूंज गई। हसन ने खा जाने वाली नजरों से देखा। कामरान ने चुप रहना ही बेहतर समझा। फैक्ट्री में आने जाने के सामने वाले दरवाजे पर ताला नहीं था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। हसन ने दरवाजे का कांच तोड़ा और अंदर हाथ डालकर दरवाजे को खोल दिया। अंदर पहुंचकर दोनों को सीलन और बू सी महसूस हुई। कमरा बिल्कुल खाली था। हसन ने स्विच ऑन करके कमरे में रोशनी कर दी।
1: कामरान जहां हो वहीं रहना, ज्यादा चलना नहीं है कमरे में। बैग से वो मशीन और स्प्रे बोतल भी निकाल लो।
2: हसन ने जमीन पर कोई केमिकल स्प्रे किया। और फिर मशीन को खड़ा किया और मशीन का तार एक बोर्ड में नस्ब कर दिया। हसन ने कमरे की लाइट बुझा दी और मशीन को ऑन किया। मशीन एक शोर के साथ चलने लगी। और मशीन से नीली रोशनी निकलकर कमरे में फैलने लगी और कुछ देर बाद कमरे में जगह जगह पैरों के निशानात दिखाई देने लगे, जिसे देखकर कामरान हैरत सदा भी हुआ और खुश भी।
0: वाह भाई वाह, ग्रेट डिटेक्टिव साहब, आखिरकार आपने पैरों के निशानात खोज ही निकाले। तो आज हम यहाँ इसलिए आए थे।
1: तुम्हें क्या लगता है मैं आज यहाँ इन पैरों के निशानात के लिए आया हूँ? मुझे तो कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पैरों के निशानात ना हो।
2: ये सुनकर कामरान और हैरतज़दा हुआ।
0: ओफो, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम यहाँ

0: पैरों के निशान नहीं बल्कि बिना निशानों वाली जमीन खोजने आए हैं। खैर वो कोने के पास देखिए जरा, वहां मुझे किसी भी तरह के निशानात नजर नहीं आ रहे।
1: हसन की आंखें चमक गईं, वो खुश हुआ और बोला,
2: बहुत अच्छे फरजंद, मेरे पीछे दीवार के किनारे से मिले हुए आ जाओ,

0: ये दोनों यहाँ फैक्ट्री में मसरूफ थे। वहीं दूसरी तरफ ठाकुरगंज के एक किनारे में एक वेल्डिंग की दुकान थी। दुकान तो दुनिया को दिखाने के लिए थी, असली खेल वहां कैसीनो का था। वहां का मालिक सुल्तान था, जो बेहद गुस्सैल और लंबा तगड़ा आदमी था। लोग उससे डरते थे। सुल्तान के आदमी किसी आदमी को पकड़ कर लाए थे और उसे कुर्सी से बांध कर अजियत पहुंचा रहे थे। वो जितना तड़पता वो लोग उतना ही कहकहा लगाते। तभी सुल्तान की गजबनाक आवाज गूंजी।
1: इसने बताया कि वो सोना इसने कहां छुपा के रखा है?
2: नहीं सुल्तान भाई, बड़ी सख्त जान है, कब से मार खा रहा है, कुछ बोलता ही नहीं।
1: बोलेगा, सुल्तान के आगे पत्थर भी बोलते हैं।
0: सुल्तान की आंखों पे खून उतर आया था। उसने उस आदमी को बिजली के झटके देने शुरू किए। और दो ही झटकों में वो आदमी बेहोश हो गया।
1: होश में आते ही दोबारा झटके देना।
0: इतने में सुल्तान का फोन बजा।
1: सुल्तान बोल रहा हूँ।
3: सुल्तान के बच्चे, तुझे बोला था कि फैक्ट्री की निगरानी करनी है।
0: आवाज सुनकर सुल्तान भीगी बिल्ली बन गया और हकलाने लगा।
1: नहीं जनाब, सब मेरे काबू में है, मेरे लोग निगरानी कर रहे हैं।
3: मुझे पता चला है फैक्ट्री में दो लोग घुसे हैं, पता लगाओ वो कौन है और रास्ते से हटाओ उनको। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, ये बात किसी को पता ना चले, समझे?
1: मैं अभी अपने आदमी भेजता हूँ।
0: उधर दूसरी तरफ फैक्ट्री में हसन और कामरान उस जगह पहुंचे जहां पैरों के निशानात नहीं थे।
4: कामरान, यहां जरूर कुछ ऐसा है जिसकी हमें तलाश है। तुम दीवार देखो, मैं फर्श की जांच करता हूं।
0: दोनों दीवार और फर्श की जांच करने लगे। हसन को फर्श में एक जगह कुछ अलग आवाज आई।
4: कामरान, कमरा यहां देखो, यहां फर्श में कुछ है।
0: कामरान ने फर्श से लकड़ी का एक हिस्सा खोला और नीचे एक तहखाना मिला। सीढ़ियां नीचे तहखाने में जा रही थी।
4: कामरान, अब हम सही सिमत में जा रहे हैं, चलो तहखाने में चलते हैं।
0: इससे पहले दोनों तहखाने में जाते, चार मुसलह बदमाशों ने उनको घेर लिया।
5: खबरदार, तुम लोग हमारी बंदूक के निशाने पर हो, एक गलत हरकत और इस दुनिया से टिकट काट दिया जाएगा। अपने हाथ उठा लो।
0: और दोनों ने अपने हाथ हवा में ऊपर उठा लिए।
4: मोहतरम, इस पुर मसर्रत मौके पर मैं आपको बशीर बद्र साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।
0: कामरान और बदमाशों ने हैरत से हसन को देखा। कामरान को लगा हसन का दिमागी तवाजुन खराब हो गया है।
6: इतनी देर मेरे साथ थे, तब तो कोई शेर न सुनाया, बंदूक के सामने शायरी, अजीब इंसान है।
4: कामरान, देखो तो जरा, मेरा दोस्त आया है। अफसोस, ये मुलाकात लंबी ना चलेगी।
0: पुलिस के दो सिपाहियों ने पीछे से आकर बदमाशों को घेर लिया। मजबूरन बदमाशों को अपनी

0: नीची रखनी पड़ी। अब कामरान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने एक बदमाश को मुक्का मारा। बदमाश की चीख से कामरान को सुकून मिला। दो बदमाशों को हसन ने संभाल लिया। तभी किसी ने फैक्ट्री की लाइट काट दी। हर तरफ अंधेरा हो गया और अंधेरे में गोलियां चलने लगी। हसन कामरान को लेकर तहखाने में कूद गया। दोनों सिपाही बाहर ही रह गए। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज बंद हो गई। हसन कामरान को लेकर तहखाने से निकला। बाहर उसे दोनों सिपाही मिले, जिसमें से एक जख्मी था। कामरान को भी कुछ चोटें लगी थी। हमलावर जा चुके थे। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और एक लड़की भी। हसन ने कामरान को उस लड़की से मिलवाया, जिसे देखकर कामरान का सारा दर्द गायब हो गया।
1: कामरान, इनसे मिलो। ये है रिपोर्टर अलशिफा।
2: हेलो, माई सेल्फ अलशिफा एंड आई एम अ जर्नलिस्ट।
3: हेलो अलशिफा, कैसी हैं आप? वैसे आपको कुछ भी जानना हो तो ध्यान रहे, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ।
1: बको मत कामरान, चुप रहो। अलशिफा, यहाँ की न्यूज कवर करना, लेकिन ध्यान रहे, मेरा और कामरान का किसी भी तरह का जिक्र नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता दुश्मन मोहतात हो जाएं।
2: आप बेफिक्र रहिए सर, मुझे पता है अब भी लोगों को क्या बताना है और क्या नहीं।
1: बहुत शुक्रिया अलशिफा। कामरान, अब चलो, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं।
0: अगली सुबह हसन और कामरान हजरतगंज के एक होटल में अपने कमरे में बैठे थे। नाश्ता आ चुका था, मगर कामरान का मूड गड़बड़ था।
1: बेटे, नाश्ता आ चुका है, कर लो, मिजाज क्यों खराब है?
3: आपको नाश्ते की पड़ी है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे कुछ बताना जरूरी क्यों नहीं समझते। मुझे क्यों नहीं बताया था कि दो सिपाही भी पीछे हैं हमारी निगरानी के लिए, और वो रिपोर्टर कौन थी? कब से जानते हैं उसे? मुझे उसका फोन नंबर भी नहीं लेने दिया। चला था जिक्र जमाने की बेवफाई का, सो आ गया है तुम्हारा ख्याल वैसे ही।
1: तुम्हारा जहन अभी रिपोर्टर के पीछे ही भाग रहा है। तुमने ये नहीं सोचा कि वो बदमाश कौन थे और उनको किसने भेजा था। पुलिस को वहाँ कोई भी नहीं मिला, किसी की डेड बॉडी भी नहीं मिली, जबकि एक सिपाही जख्मी है। कोई तो ऐसा दिमाग है जिसे पता था हम वहाँ पर हैं।
3: और पता नहीं कितने राज दफन कर रखे हैं इस बंदे ने अपने सीने में।
0: इससे पहले हसन कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई। वेटर कोई खत लेकर आया था।
1: इस पे तो भेजने वाले का पता ही नहीं है, किसने भेजा है?
4: पता नहीं साहब, एक बच्चा अभी आपका नाम बोलकर ये लिफाफा दे गया है।
0: हसन ने खत खोला। अंदर लिखा था, कल रात की मेहमान नवाजी कैसी रही? इस मामले से हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। तुम कभी नहीं जान पाओगे मैं कौन हूं।

0: खत पढ़कर हसन मुस्कुराया, जबकि कामरान हैरत ज़दा था। कौन था यह खत भेजने वाला? कौन था सुल्तान? उस फैक्ट्री का राज क्या था और वो बदमाश कौन थे? इस बार हसन और कामरान किस मुश्किल में फंसने वाले थे, जानने के लिए सुने मैं कौन हूं।
1: डरती हैं अहले जुर्म हसन कामरान से, शमशीर जब भी निकली है उनकी मियान से। छुप जाएं कहीं जाके वो दुनिया की नजर से, मुजरिम को ढूंढ लाएंगे सारे जहान से।

0: इस ड्रामाई सिलसिले को अपनी दिलकश आवाजों से आरास्ता करने वालों के इसमें गिरामी हैं सुरेंद्र राजेश्वरी, आसिफ इकबाल, जमशेद सिद्दीकी, शमसुल आरफीन, मोहम्मद उमैर, डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर, सैयद मोहम्मद उमैर और शाइस्ता जाहिद। तहरीर और पेशकश आसिफ इकबाल की है। सामईन अपनी कीमती आरा आप हमको जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157, 7991778157। अब आज के उर्दू प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आदाब।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज के कलाकार हैं हीरालाल यादव और साथी। इनके स्वर में सबसे पहले लीजिए सुनिए देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत और आज के कलाकार हैं हीरा लाल यादव और साथी। इनके स्वर में अब लीजिए सुनिए कजरी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज के कलाकार थे हीरा लाल यादव और साथी। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म भैरवी से। आवाज है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा है अमित खन्ना ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चुपके चुपके से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है एसडी बर्मन ने।

एक बार फिर से लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में जुर्माना फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

ये गीत हमने लिया है फिल्म देशवासी से। आवाज़ है अनुराधा बर्डवाल और साथियों की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म मेरा गांव मेरा देश से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म प्यासा सावन से ये गीत। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आशा फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब लीजिए सुनिए सुरेश वाडकर और अनुपमा देश पांडे की आवाज में फिल्म चांदनी से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है शिवहरि ने।

अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जैसे को तैसा फिल्म से ये गीत। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अब लीजिए सुनिए जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में फिल्म सावन को आने दो से ये गीत। गीत लिखा है गौहर ने और संगीत दिया है राजकमल ने।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म नहले पे दहला से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म घर घर की कहानी से ये गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत।

दोस्तों, आप सभी को आपकी रेडियो सखी सुषमा गुप्ता का नमस्कार। और हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत, जो कि आपके ही भेजे हुए पत्रों पर आधारित होता है। तो बस हम यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें ढेरों पत्र भेजें, ताकि हम अपने इस कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र शामिल भी कर सकें। क्योंकि ज़माना नया आ चुका है, मॉडर्न ज़माने में आप लोगों को बहुत ही सुविधा मिलती है जब आप अपने मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं और व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं। लेकिन कहते हैं कि पुरानी चीज़ें हमेशा नई होती हैं, पुराना पुराना ही होता है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, और ओल्ड इज़ गोल्ड। तो फिर हम इसे कैसे भूल सकते हैं कि हमारा जो पत्र है, ये पत्र वाले जो कार्यक्रम है, ये कभी इन्हीं यही हमारी जान हुआ करते थे, तो आज हम कैसे भूल सकते हैं। तो हम आपको यही गुजारिश करेंगे कि आप हमें हमेशा ऐसे ही पत्र भेजते रहें जैसे आपने हमें भेजा हुआ है। तो कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं हम पहले गीत से। रामलखन फिल्म से ये गीत है और आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, ये गीत आपने सुना राम लखन फिल्म से अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, और इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। गोला बाजार बक्सर से जीवित प्रसाद, आशीष कुमार, सतीश कुमार, आयुषी और सानवी, और गोला बाजार बक्सर से ही श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। ये पत्र है एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा और शकील अहमद, साथ ही साथ सलीम अहमद, शहनाज खान। आपने ये पत्र भेजा है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी और इनकी बड़की दीदी ने ये पत्र भेजा है। और जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही और फिरोज आलम नाज प्रवीण ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी थी। तो आप सभी की पसंद पर हमने आपको ये गीत सुना।

अनजाना फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और

और इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। नई सड़क वाराणसी से शाहिद सद्दू, मलका मुमताज, इंशा इली तारिक, कपड़ा मार्केट से गुड्डू, शमा रुमा, इशरा शालू, आमिर और सारिक, दुल्हीपुर बंजर से रफीक, रिजवाना रेहान और मुकित, और नई सड़क वाराणसी से ही अगला पत्र है कोदई चौकी दहलू गली से बेबी आलम नफीस अनवर भाई जरीवाला का। ये पत्र है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा का। और अगला पत्र हमारे हाथ में है उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम मुड़ेला से कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैया लाल और रीता देवी का। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। और अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सच्चा पाठक। आप सभी ने इस गीत को सुनना चाहा था। और श्रोताओं, अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं बरसात फिल्म से, ये गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, और इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है रोशन ने।

बरसात की रात फिल्म से ये गीत आपने सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी और संगीत निर्देशन रोशन का था। और सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने तकिया बणियाहूं जौनपुर से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश शाह और मोहम्मद साजिद शाह ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज बाबू ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर ने। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा ने। और कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत प्रवीण, सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, सादिया तस्नीम और आलिशा। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है आपके पत्र आपके गीत। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुषमा गुप्ता और आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। तो हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पत्र भेजें। पत्र भेजने के लिए आपके पास हमारा पता होना चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं के पास हमारा पता पहले से ही है और जिनके पास नहीं है वो नोट कर लें। कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी। हमारा पिन कोड है 2210100। एक बार पता एक बार फिर से आप नोट करें। यदि लिखने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, कुछ छूट गया हो तो आप फिर से हमारा पता सुन लें। हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी। हमारा पिन कोड है 2210100। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म भूमिका से प्रीति सागर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गीत सुनिए। और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार वनराज भाटिया।

भूमिका फिल्म से ये गीत आपने सुना। आवाज थी प्रीति सागर और भूपेंद्र सिंह की। सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। और भिलाई छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा था मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं शर्मिली फिल्म से ये गीत। आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है, शब्द रचना नीरज की है, संगीत निर्देशन सचिन देव बर्मन का है।

शर्मिली फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज थी। और पत्र हमारे पास आए हैं आप सभी श्रोताओं के इस गीत के लिए। संतोष कुमार सोनकर, नरेंद्र दंडकवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, आप सभी ने पत्र भेजा है बहादुरपुर रथ चौक जिला जलगांव से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने, और छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, देवरी से के आर साहू और दंतरेगी से भागवत वर्मा जी ने हमें ये पत्र भेजा है। तो श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर हमने आपको ये गीत सुनवाया और अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। इस गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने और इसे सुरों में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

ब्लैकमेल फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार की, पसंद आप सभी श्रोताओं की थी। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे, लेवाखेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोरना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। साथ ही ये पत्र है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी का, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी का, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती का। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने इस समय अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी।

सुषमा गुप्ता। तो कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नगीना फिल्म से, आवाज़ अनुराधा पौडवाल की है, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

नगीना फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज़ थी अनुराधा पौडवाल की। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास पत्र आया है सादुल शहर राजस्थान से, ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान का। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुध, अश्वनी चुग, गोविंदा चुग, टोनी दीवान और लव दीवान, और साथ ही साथ राधे भाविक ढींगरा जी का ये पत्र है। कारज पुणे से, महेश हजारे, मिंताशु हजारे, आदित्य हजारे और इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे और प्रमोद हजारे जी का। आप सभी ने इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी। और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, विजय पथ फिल्म से आवाज़ है अलका याग्निक की, गीतकार इंदिवर, संगीतकार अनु मलिक। और हम आप सभी को फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम भी बता देना चाहेंगे। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया जी का, और दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी और शिल्पा रानी, आकाश कुमार का।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं थी, आपकी दोस्त सुषमा गुप्ता। अगले कार्यक्रम में फिर मिलने के वादे के साथ स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार और हमें यूं ही ढेरों पत्र भेजते रहें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। मीडियम वेव के मीटर पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
1: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइंद दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
1: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
3: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
4: जी दादाजी।

0: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
1: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
2: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
0: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
3: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
4: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
3: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
5: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
2: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह मैं कब बीमार पड़ूंगा।
1: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा, मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
3: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
2: दादी लगता है मुझे बुखार है।
3: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
2: दादी बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
3: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
2: अरे दादी इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
3: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
2: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
3: अरे बेटा लेकिन स्कूल का क्या होगा?
2: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
3: अरे ये तो खांस भी रहा है, अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
2: जी दादी।
0: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
6: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
2: जी दादाजी अच्छा नहीं लग रहा है।
6: अरे अरे अरे अरे फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
3: जी।
6: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
3: जी जी अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो।

0: धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
1: ओ ये तो बहुत कड़वी है ये।
0: अच्छा इसे खाने में क्या देना है?
2: देखो आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, शाबाश।
1: जी दादाजी।
3: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
2: कैसी तबीयत है बेटा?
1: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
2: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ उठो। चलो चलो शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
3: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
1: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
4: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
2: अरे सुमेश बेटा जग गए, कुछ आराम आया बेटा है? बोलो ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
1: जी दादाजी।
0: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ वरना ठंड लग जाएगी। हाँ मैं बस अभी आई, तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ और शाम तक
2: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
0: बेटा।
1: जी।
3: सोमेश जलन गुस्से और कुड़हन में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
4: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग

0: यह तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
1: ऐसे नहीं मानेगा
2: साहब, मत करो साहब।
1: चल सिपाही।
3: यस सर।
2: साहब
1: इसको हंटर मारो।
2: साहब
3: जी सर।
2: साहब
4: कमाल जी, कमाल जी से कमेंगे।
5: हमारे देश कमाल जी से
4: कमेंगे।
6: अबुआ राज,
7: अबुआ तिसुम,
8: अबुआ राज,
9: अबुआ तिसुम,
6: अबुआ राज,
7: अबुआ तिसुम।
0: अबुआ राज, अबुआ तिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
10: ५८५७ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
11: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
10: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
11: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
10: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
1: Amen. तुम्हारा नाम क्या है?
2: जी जी मेरा नाम कोड़ा है।
1: ओके, तो तुम कोड़ा हो
2: जी।
1: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
2: जी ये मेरी जमीन है।
1: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है
2: जी। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
1: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
1: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
3: जी सर,
1: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
3: जी सर।
1: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
3: जी सर।
1: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
3: जी सर।
2: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो साहब, साहब साहब ऐसा मत करो।
1: चलो हटो,
2: साहब साहब
1: आओ,
2: साहब साहब
1: आओ। ए, ऐसे नहीं मानेगा
2: साहब, मत करो साहब।
1: चल सिपाही।
3: यस सर।
2: साहब
1: इसको हंटर मारो।
2: साहब
3: जी सर।
2: साहब साहब मत करो साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब।
10: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को

0: बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
1: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
0: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
1: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
2: भाई कान्हू।
3: जी भैया।
2: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
3: हाँ, वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ।
2: क्या हुआ?
3: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
2: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
3: हाँ भैया।
2: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
3: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
2: तो फिर
3: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
2: हाँ, ठीक कहा तुमने।
3: हाँ,
2: ऐसा ही करेंगे।
3: जी भैया।
1: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
0: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
1: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
0: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे हमारी जमीन
5: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
6: सही बोले, सही कहे।
5: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
7: हाँ, सही कहा।
5: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
6: भैया सही बात
7: कह रहे हैं।
5: हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
7: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
5: भाइयों, अब समय आ गया है कि हम

0: बातों का विरोध करें और हमारा नारा है अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
1: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
0: अब करो या मर जाओ,
1: अब करो या मर जाओ,
0: अबुआ राज अबुआ दिसुम,
1: अबुआ राज अबुआ दिसुम,
0: अबुआ राज।
2: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
3: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिद्धू कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
2: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिद्धू और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
3: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
2: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
3: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिद्धू और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया। उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया।

0: किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से, और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं कुमार अम्बरीश चंचल। आज आप सुनेंगे इनके गाए भजन। तो आइए पहला भजन सुनते हैं कुमार अम्बरीश चंचल की आवाज़ में। रचना है तुलसीदास जी की।

अभी आपने कुमार अमरीश चंचल का गाया ये भजन सुना। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं डॉक्टर राम शंकर। आज आप सुनेंगे इनका गाया राग गौड़ मल्हार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित नंद किशोर मिश्र और हारमोनियम पर इंद्रदेव चौधरी।

0: अभी आपने डॉक्टर राम शंकर का गाया राग गौड़ मल्हार सुना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित नंद किशोर मिश्र और हारमोनियम पर इंद्रदेव चौधरी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपने

0: ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि यह समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के 11 स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन 3 विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के 3रे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 3रे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलम्बो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अखिलेश पटेल पुत्र प्यारे लाल पटेल निवासी हरदासपुर थाना चोलापुर जिला वाराणसी 26 जून 2026 से

ग्राम हरदासपुर से लापता हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 35 वर्ष, एकहरा, मजबूत जिस्म, ऊंचाई 5 फीट 5 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, सर पर पूरे बाल हैं और घटना के समय इन्होंने टी शर्ट, सफेद रंग का पैंट और पैर में चप्पल पहन रखा हुआ था। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नजदीकी थाना या थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। थाना राजा तालाब जनपद कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार राजनारायण पुत्र बचनू पटेल निवासी करधना ग्राम भटपुरवा पोस्ट करधना थाना मिर्जापुरा मुराद 2 जुलाई 2026 से राजा तालाब मंडी से लापता है। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 60 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, एकहरा बदन, रंग गोरा, चेहरा गोल, बाल अधपक्का सफेद, आंखें काले रंग की हैं और इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नजदीकी थाना या थाना राजा तालाब जनपद कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। सूचना संपन्न हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी दिन 1:15 पर गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी चर्चा और गीत संगीत के अलावा बातचीत। विषय होगा बरसात में बच्चों को कैसे रखें स्वस्थ। ये बातचीत डॉक्टर रुचि तिवारी से की जाएगी। दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे हीरालाल यादव और साथी। इन्हीं का गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। इसी कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे नागपंचमी का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व विषय पर प्रोफेसर आशा यादव से की गई बातचीत। शाम 5:00 युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और साथ ही साथ सुनेंगे वार्ता जिसका विषय होगा भारत की अंतरिक्ष यात्रा। वार्ताकार होंगे अभिषेक कुमार यादव। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे परिचर्चा, विषय कृत्रिम बुद्धिमता का युग, अवसर या चुनौती, और प्रतिभागी होंगे डॉक्टर श्रद्धानंद, डॉक्टर उपासना राय, प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह और पंकज श्रीवास्तव। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे डॉक्टर राम शंकर। दिन 2:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो कि आपके भेजे हुए व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा भोजपुरी फिल्मी गानों पर। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: में फर्श, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बैतुलखला, पीने के पानी की सहूलत, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, फर्नीचर वगैरह समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की हैं।
1: ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।
0: नाग पंचमी का त्यौहार आज पूरी रियासत में रवायती अंदाज में अकीदत और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर रियासत के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने भगवान शिव से दुआ की कि हर घर और आंगन खुशी, अमन और खुशहाली से मुनव्वर हो। उन्होंने नागपंचमी को एक मुकद्दस त्यौहार के तौर पर बयान किया जो फितरत, बकाए बाहमी और शिवत्व का पैगाम देता है। इस दरमियान बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कल से ही अकीदतमंदों और कांवड़ियों की बड़ी भीड़ वाराणसी पहुंच रही है। एक रिपोर्ट।
2: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज के जिलों और राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। सावन सोमवार को शिव पूजन जबकि नागपंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: नागपंचमी और सावन महीने के तीसरे सोमवार के मौके पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान शिव की मंगला आरती की गई। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दर्शन पूजा के लिए आए हुए कांवड़ियों और अकीदतमंदों का फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार और जज्बाती इस्तकबाल किया गया। बाराबंकी के रामनगर में वाक़ श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर के दरवाजे जैसे ही खुले वहां अकीदतमंदों की भीड़ लग गई और पूरा कॉम्प्लेक्स बोलबम और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। अमरोहा, फर्रुखाबाद और जौनपुर में भी बड़े शिव मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की कतारें देखी जा रही हैं। पीलीभीत में जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह ने सावन के सोमवार पर भारी भीड़ और रास्ते बदलने की वजह से दर्जा 8 तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। अग्निवीर भर्ती रैलियां रियासत के 6 जिला मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या में मुनक्किद की जाएंगी। भर्ती रैली आज 17 अगस्त को मेरठ में शुरू होगी जो 14 अप्रैल को अयोध्या में इख्तिताम पजीर होगी। एक हालिया जायजा मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल ने उम्मीदवारों की रिहाइश, सिक्योरिटी और भर्ती की जगहों पर भीड़ और ट्रैफिक के इंतजाम के मौसर इंतजाम की हिदायत दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट इम्तिहान के 3 मजामीन अंग्रेज़ी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए दोबारा इम्तिहान का ऐलान किया है। यह फ़ैसला इन मजामीन में गलतियों की मुतअद्दिद शिकायात मौसूल होने के बाद किया गया है। NTA ने कहा कि 9 सितंबर को अंग्रेज़ी मजमून सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, उसी दिन कॉमर्स का मजमून सहपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और सोशियोलॉजी का मजमून 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। नतायज काउंसिल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। ये मालूमात देते हुए काउंसिल ने कहा कि हाई स्कूल के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट इम्तिहान में 20,855 उम्मीदवारों ने शिरकत की जबकि इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट इम्तिहान में 21,227 उम्मीदवार शरीक हुए। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज मशरकी और मगरबी डिवीज़न के कई मकामात पर तेज़ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चित्रकूट में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी के पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मंदाकिनी नदी रामघाट पर खतरे के निशान को उबूर कर चुकी है। पानी की बढ़ती हुई सतह के पेश नज़र इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम।

0: सखियों के साथ
1: सखियों की बात
0: सखियों के जज्बात
2: गृहलक्ष्मी।
3: स्वागत है सखियों आपका अपनी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। मैं हूं तंजील और हमारे साथ हैं हमारी प्यारी सखी पूजा।
4: नमस्कार, नमस्कार।
3: पूजा आज सावन का महीना है और आज तो भोलेनाथ का प्रिय सोमवार है।
4: और सुबह से ही देखे ना तंजील गली में और शहर में एकदम शिव जी के जो भक्त हैं वो लंबी लाइनें लगा के उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। और साथ ही तंजील देखे ना कि हर ओर एक गूंज सुनाई दे रही है, हर हर महादेव बोल बम, ये सब मतलब बहुत ही सुंदर लगता है कि मतलब हर तरफ काशी जो है हमारी वो तो पहले से ही शिव में है, अभी और भी सुंदर लग रही है। और साथ ही सावन में, सावन का महीना भी जो है उसमें सावन के मेले भी लगे हुए हैं जगह जगह। और सबसे बड़ी बात आज तंजील आज नाग पंचमी भी है और आज के दिन नाग की भी पूजा की जाती है।
3: घर घर में पूजा पाठ की तैयारियां चल रही है, मंदिरों में जल चढ़ाने की चहल पहल है और हमारी कुछ सखियों ने व्रत भी रखा होगा तो उनका अपना बिजी शेड्यूल है ना।
4: और देखिए ना सावन का उत्साह जो है, सोमवार का उत्साह जो है वो बहुत ही अलग है। तंजील देखिए बहुत सारी सखियों ने व्रत किया भी होगा, कुछ सखियों ने नहीं भी किया होगा। तो व्रत तीज त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, पर संस्कृति को बचाने और संवारने की जिम्मेदारी के लिए निभाने के लिए भी स्वस्थ रहना जरूरी है।
3: बिल्कुल, कि हम महिलाओं की तो जिम्मेदारी होती है, हमको पूरा घर देखना होता है, तो अगर हम नहीं स्वस्थ रहेंगे तो कौन देखेगा।
4: और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना महिलाओं के जो शारीरिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, पर थोड़ी सी एक्सरसाइज संतुलित आहार लेकर हम सक्रिय और ऊर्जावान भी रह सकते हैं।
3: बिल्कुल सही बात कही पूजा, हमें अपने खान पान में बदलाव की जरूरत होती है, उम्र के साथ साथ हमें थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए उसमें, है ना।
4: और घर और ऑफिस के कामों में हम घर की जिम्मेदारियों के बीच जो है ना खुद का ख्याल कभी नहीं रख पाते और जिसे पूरा करने में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। और खुद को स्वस्थ रखना भी हमारे लिए एक टास्क है।
3: बिल्कुल,
4: और तंजील देखिए ना स्वस्थ रहने के लिए, सक्रिय रहने के लिए हमें नियमित रूप से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, साथ ही मौसमी फलों का सेवन भी जरूर करना चाहिए। और तंजील खाने पीने और मतलब संतुलित आहार लेना तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ सकारात्मक सोच और खुद को तनाव मुक्त रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में ना परेशानियों के बीच तनाव से दूर रहना भी बहुत जरूरी है।
3: पूजा आपने बात तो सही कही है, लेकिन हमारी कुछ सखियां सोचती हैं कि हम दिन भर घर के काम करती हैं तो यही हमारी एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर का काम अपनी जगह है और शरीर को एक्टिव रखने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है।
4: और तंजील देखिए ना बढ़ती उम्र के साथ अपने लिए समय निकालना, कुछ मनपसंद की चीज़ें करना जिसमें आपको खुशी मिले, सखियो अपने मनपसंद की चीज़ें करना हर किसी को पसंद है, थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए, मतलब कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, पेंटिंग करना, गाना गाना, जो भी आपको अच्छा लगा, खाना बनाना, ये जो मनपसंद की चीज़ें हैं ना वो आप ज़रूर करें। और आजकल के समय में अपने शौक को पूरा करना भी, जीना भी एक अपने मन को शांत करने जैसा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कहते हैं ना उम्र बस एक नंबर है, तो सीखने का और कुछ भी करने का कोई उम्र नहीं होता। जब आपने सोच लिया कि हमें ये करना है उसी दिन से वो शौक जो है वो पूरा शुरू हो जाता है। और घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, हम सब इतना उलझ जाते हैं ना कि हमें खुद का ध्यान रखना बहुत ही बिजी लगता है, बहुत ही टफ लगता है कि अरे आज तो कर लिया है चलो कल से शुरू करेंगे, तो इस कल के चक्कर में बहुत सारा समय बीत जाता है और हम सक्रिय होते होते थोड़ा पीछे रह जाते हैं।
3: पूजा इन सब के लिए हमें पर्याप्त नींद लेना भी तो जरूरी है।
4: और नींद पूरा लेने से हमारी थकान जो होती है कम होती है
3: और हमारा मन को एक्टिव महसूस करते हैं।
4: अगर हमारा मन शांत है, शरीर सही है, तो हम कुछ चीज़ें सोच पाएंगे, घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा अलग सोच पाएंगे। और तंजील कहते हैं ना हमारी सखियां जो हैं वो खाना बनाते बनाते कुछ ना कुछ करते करते अच्छे अच्छे गाने तो जरूर सुनती हैं और गाने सुनने से मन और भी अच्छा हो जाता है।
3: तो चलिए पूजा अपनी सखियों का मन खुश करने के लिए सुनवाते हैं ये गीत।

0: दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना।

तक के जो बच्चे हैं वो केवल माँ के दूध पर निर्भर करते हैं, तो इसमें विशेष ख्याल जो है वो माँ को रखना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। पहले तो कि जब वो अगर स्तनपान करा रही हैं तो वो अपने स्तनों को साफ करने के बाद ही बच्चे को स्तनपान कराएं। दूसरा

0: एक चीज और होती है कि जब बारिश की बात हो रही है तो बच्चों के कपड़े जल्दी नहीं सूखते, कुछ घरों में धूप नहीं अच्छी आती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं कान में, आंख में या फिर स्किन पे, त्वचा पे हो जाते हैं, तो ऐसे में वो क्या करें?
1: हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी

0: अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो किस तरह से हम एक स्वस्थ बच्चे को की परवरिश करें, कैसे रखें कि किसी भी मौसम में, बरसात के ही नहीं, किसी भी मौसम में हमारा बच्चा जो है स्वस्थ रहे।
1: देखिए, अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम

रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं हीरालाल यादव और साथी। आइए इनके स्वर में पहले सुनते हैं ये कजरी।

प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव

0: मचने से ये हादसा हुआ।
1: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल पर, तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत यह प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
3: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित

जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

एक सेवन नाइन ज़ीरो फाइव फाइव वन नाइन नाइन एट वन। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में आज हम शामिल कर रहे हैं आपके भेजे हुए व्हाट्सएप संदेशों को, और कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं पहला गीत। बलम परदेसिया फिल्म से आवाज़ है आशा भोसले की, शब्द रचना अनजान की है और संगीत निर्देशन चित्रगुप्त का है।

श्रोताओं, आपके SMS आने शुरू हो चुके हैं और ये पहला संदेश है बलम परदेसिया फिल्म के गीत के लिए। आपने लिखा है, गीत हमें बहुत पसंद आ रहे हैं जी, और आपने ये मैसेज भेजा है नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी।

मानिकपुरी राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने यह संदेश भेजा है। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और पोता, इनका पोता मास्टर अल कबीर। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा।

ग्राम पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति और शिवांश वर्मा जी ने ये संदेश भेजा है। बलम परदेसिया फिल्म के लिए ग्राम चक फुटही असनाव बाजार जिला भदोही से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, बीरेंद्र कुमार यादव। ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी लंबे बाबू। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास।

श्रोताओं, हमारा अगला गीत तो होगा विदेशिया फिल्म से, और इस फिल्म के गीत के लिए आप हमें संदेश भेजना शुरू करें। बलम परदेसिया फिल्म के लिए यह संदेश है जमानिया जिला गाजीपुर से, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल का। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, हेमराज प्रजापति और कयूम शाह।

ये संदेश है बलम परदेशिया फिल्म के गीत के लिए भोपाल गढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, और हाँ आप सभी ने हमें ये संदेश भेजा है। और श्रोताओं आपसे ये गुजारिश है कि अब अगले गीत के लिए आप हमें भेजें, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं विदेशिया फिल्म से, ये गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, और गीतकार हैं राम मूर्ति चतुर्वेदी, संगीतकार एस एन त्रिपाठी हैं।

तो श्रोताओं, हम आपके संदेश शामिल करते हैं। ये है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा दंतरेगी से।

थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष आयुषी और सानवी गुप्ता। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूफा तूबा आफरीन,

गहमहपुर गंगापुर वाराणसी से, शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, स्नेहा कुमारी, जागृति, श्वेता कुमारी एंड रुद्र कुमार।

0: ये संदेश है राम सकल चौधरी जी का और सूरज चौधरी रेणु देवी सलोनी मौनी बाबा धाम चौचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से।
1: अब हंस बोल चल।
0: पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू सीमा साहू।
1: चल चल गंगा के पार सैया तो
0: कहना। पोटवा कपिल धारा सराय मोहाना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी राखी आर्या एंद्री सारंग ओम नाथ शिवांग अदिति और इनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी। पिपरिया से कमल कांत गुप्ता श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। दंतरेगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखे लाल वर्मा आप सभी ने ये हमें संदेश भेजा है।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र।

है। खिचड़ी की घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। सभा की शुरुआत आइए करते हैं फिल्मी गीतों के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म आपकी कसम का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म जियो तो ऐसे जियो से, आवाज महेंद्र कपूर और साथियों की है। इस गीत को लिखा है नक्श लियालपुरी ने और धुन तैयार की है राम लक्ष्मण ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाए बीमारी भगाए, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता का दीप जलाएंगे चारों ओर उजियारा फैलाएंगे, सभी रोगों की एक दवाई घर में रखो साफ सफाई।

0: उसके हर छोटे बड़े जीव के महत्व का भी एहसास होता है।
1: सावन की भीगी हवाएं, पत्तों पर ठहरी ओस की बूंदें और फैली चारों ओर फैली हरियाली और चहकती प्रकृति, मानो धरती ने हर रंग को अपने आंचल में समेट लिया हो।
0: और यह वही समय है जब जैव विविधता अपने सबसे जीवंत स्वरूप में दिखाई देती है। ऐसे ही प्रकृति के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व का संदेश लेकर आता है नाग पंचमी का पावन पर्व।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ स्वागत करते हैं हम आपका हमारे आज के युववाणी कार्यक्रम में, जिसमें आज आप सुनेंगे हमें यानी जयशालिनी
0: और मोनिशा को। तो इसी के साथ स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।

मीडियम वेव 241.5 चैन मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी।

0: दोस्तों, सावन की रिमझिम फुहारें, धरती पर बिछी हरियाली की चादर और प्रकृति का मनमोहक श्रृंगार। ये मौसम केवल बारिश का नहीं, बल्कि जीवन, उल्लास और जैव विविधता के उत्सव का भी प्रतीक है।
1: जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में मुस्कुराती है, तब हमें

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: UPA 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
6: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
5: UPA 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
6: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
5: यूपी 112, नंबर एक, सेवाएं अनेक।
7: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
8: सुनो ना।
9: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
9: तो रोका किसने है? हाँ?
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
9: मुझसे।
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
9: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
9: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
9: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो
10: 0542227658।
7: 0542227658।
8: लो अभी फोन लगाता हूँ।
7: 0542227658।
11: सावन की हरियाली, रिमझिम फुहारे और श्रद्धा का सुंदर संगम, इन्हीं के बीच आज पूरे देश में मनाया जा रहा है नागपंचमी का पावन पर्व।
12: जी हाँ, नागपंचमी केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि प्रकृति और जैव विविधता के सम्मान का भी पर्व है। हमारी संस्कृति हमें हर जीव के महत्व को समझना सिखाती है।

0: दोस्तों, आसमान को देखकर सपने देखने से लेकर चांद और मंगल तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा उपलब्धियों, चुनौतियों और आत्मनिर्भरता की एक शानदार कहानी है।
1: और हमारी आज की जो वार्ता है वो भी इसी पर आधारित है कि हमारी आज की हमारा भारत की अंतरिक्ष यात्रा, और जिसके वार्ताकार हैं अभिषेक कुमार यादव।
0: तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज मुझे जिस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है वह केवल विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत के सपनों, संघर्ष, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी है। मेरा विषय है भारत की अंतरिक्ष यात्रा। जब हम रात के आकाश में चंद्रमा और तारों को देखते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। ये तारे कितनी दूर है? ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है? मनुष्य वहां कैसे पहुंच सकता है? इस प्रश्नों के उत्तर खोजने की मानव की जिज्ञासा हजारों वर्ष पुरानी है। भारत भी इस जिज्ञासा से अछूता नहीं रहा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में आकाश और ग्रह नक्षत्रों का विस्तृत अध्ययन मिलता है, लेकिन आधुनिक भारत की अंतरिक्ष यात्रा वास्तव में स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। चंद्रमा पर पहुंचने से लेकर मंगल की कक्षा तक, सूर्य के अध्ययन से लेकर अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी तक भारत ने बहुत लंबा सफर तय किया है। आइए अब हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत के बारे में जानते हैं। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रखी। वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई। इसके बाद 1963 में केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से पहला रॉकेट प्रक्षेपित किया गया। उस समय भारत के पास न तो बड़े रॉकेट थे, न ही आधुनिक तकनीक। संसाधनों की भारी कमी थी। कई बार वैज्ञानिकों को साइकिल और साधारण वाहनों से रॉकेट के हिस्से भी ले जाते हुए देखा गया, लेकिन इन वैज्ञानिकों के पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, कुछ कर दिखाने का विश्वास। डॉक्टर विक्रम साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष तकनीक केवल प्रतिष्ठा के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उपयोग आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसी सोच ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक अलग दिशा दी। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई। इसके बाद भारत ने धीरे धीरे अपने उपग्रह और प्रक्षेपण यान विकसित करने शुरू किए। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था। भारत ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद वह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसके बाद भारत ने संचार, मौसम, पृथ्वी अवलोकन और वैज्ञानिक

वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। SLV-3 की शुरुआती असफलताओं के बावजूद भारत ने प्रयास जारी रखा। अंततः 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। यह घटना भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे भारत को यह विश्वास मिला कि वह अपने दम पर अंतरिक्ष में उपग्रह भेज सकता है। अब हम भारत के भरोसेमंद रॉकेट PSLV के बारे में जानते हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विशेष महत्व है। PSLV को भारत का एक बेहद सफल और भरोसेमंद प्रक्षेपण यान माना जाता है। इसने भारत को पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के साथ साथ कई विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता दी। PSLV की सफलता ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में भी पहचान दिलाई। भारत अब दूसरे देशों के उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजने लगा। इससे एक ओर भारत को आर्थिक लाभ मिला तो दूसरी ओर भारतीय अंतरिक्ष तकनीक की विश्वसनीयता बढ़ी। अक्सर हम सोचते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान का हमारे सामान्य जीवन से क्या संबंध है। वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में अंतरिक्ष तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के इनसैट और जीसैट जैसे संचार उपग्रहों ने दूर संचार, टेलीविजन, मौसम की जानकारी, आपदा प्रबंधन और इंटरनेट जैसी सेवाओं को मजबूत बनाने में योगदान दिया। दूर दराज के गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में भी उपग्रह तकनीक उपयोगी रही है। मौसम की भविष्यवाणी में उपग्रहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चक्रवात आने से पहले उसकी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। कृषि में उपग्रहों की मदद से फसल, मिट्टी, जल संसाधन और सूखे जैसी स्थितियों की निगरानी की जा सकती है। इस प्रकार भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध हमारे गांव, किसान, विद्यार्थी, मछुआरे, सैनिक और आम नागरिक के जीवन से है। आइए अब हम भारत के विभिन्न मिशनों के बारे में जानते हैं। चंद्रयान प्रथम। भारत ने 2008 में चंद्रयान प्रथम के माध्यम से चंद्रमा की ओर अपना पहला बड़ा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। चंद्रयान प्रथम भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना और वहां मौजूद खनिजों तथा अन्य तत्वों की जानकारी प्राप्त करना था। इस मिशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी चंद्रमा पर जल के संकेत की खोज में महत्वपूर्ण योगदान। इस सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। इस मिशन ने यह संदेश दिया कि भारत अब केवल अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश नहीं है, बल्कि गहरे अंतरिक्ष में भी वैज्ञानिक अनुसंधान करने की क्षमता भी रखता है। इसके बाद भारत ने मंगल ग्रह की ओर कदम बढ़ाया। 2013 में भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसे आमतौर पर मंगलयान कहा जाता है, लॉन्च किया। मंगल तक पहुंचना बेहद कठिन काम है। कई विकसित देश भी अपने मंगल अभियानों में असफल रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि मंगलयान अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस उपलब्धि ने भारत को पूरी दुनिया में गौरव दिलाया। मंगलयान की लागत भी कई अंतर्राष्ट्रीय अभियानों की तुलना में काफी कम थी। इससे भारत की कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने की क्षमता सामने आई। मंगलयान ने भारत के वैज्ञानिक आत्मविश्वास को नई चाई दी। चंद्रयान 2। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना था। इसके अंतर्गत ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सफल नहीं हो पाई, लेकिन क्या यह भारत की हार थी? नहीं, विज्ञान में असफलता अंत नहीं होती, बल्कि अगली सफलता की सीढ़ी होती है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर लंबे समय तक उपयोगी वैज्ञानिक जानकारी देता रहा। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 से मिली सीख और अनुभव का उपयोग अगले मिशन में किया। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारत की सबसे बड़ी ताकत है। गलती से सीखो, फिर प्रयास करो और सफलता प्राप्त करो। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन जिसने भारत को अंतरिक्ष इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर घूमकर विभिन्न वैज्ञानिकों चंद्रमा 3 के रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर घूमकर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग किए। इस सफलता ने पूरे देश में उत्साह पैदा कर दिया। 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रयान 3 की सफलता केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, यह भारत की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक क्षमता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। भारत की अंतरिक्ष यात्रा केवल चंद्रमा और मंगल तक सीमित नहीं है। भारत ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन भेजा। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण पिंड है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और सौर गतिविधियां पृथ्वी के वातावरण और तथा अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों और संचार प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है। आदित्य L1 का उद्देश्य सूर्य की बाहरी परत

0: सौर गतिविधियों का अध्ययन करना है। यह मिशन दिखाता है कि भारत अब केवल पृथ्वी के आसपास की समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की मूलभूत प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में अभी आगे बढ़ रहा है। गगनयान। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का अगला बड़ा सपना है मानव को अंतरिक्ष में भेजना। भारत का गगनयान कार्यक्रम इसी उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने की योजना है। मानव अंतरिक्ष मिशन किसी भी देश के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा, जीवन समर्थन प्रणाली, रॉकेट तकनीक और आपातकालीन व्यवस्था जैसी अनेक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। गगनयान की सफलता भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक नई शुरुआत होगी। अब हम अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र और न्यू स्पेस इंडिया की बात करते हैं। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं रह गया है। भारत में निजी कंपनियों और स्टार्टअप की भागीदारी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। नई पीढ़ी के भारतीय स्टार्टअप रॉकेट, उपग्रह, अंतरिक्ष डेटा और अन्य तकनीक पर काम कर रहे हैं। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में रोजगार, निवेश और नवाचार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकार की अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की नीतियों से आने वाले कुछ वर्षों में भारत का अंतरिक्ष उद्योग और तेजी से विकसित हो सकता है। हालांकि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे पहली चुनौती उन्नत अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता, दूसरी चुनौती अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान और अन्य देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी चुनौती स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष मलबा, चौथी चुनौती अंतरिक्ष में बढ़ती सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। इसके अलावा अत्याधुनिक तकनीक के विकास के लिए बड़े निवेश और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। भारत को इन चुनौतियों के साथ साथ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्राथमिकता देनी होगी। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए अंतरिक्ष तकनीक का महत्व बहुत अधिक है। जैसे उपग्रहों से फसल और भूमि की निगरानी की जा सकती है, मौसम, चक्रवात, मानसून और मौसम की भविष्यवाणी में मदद मिलती है, आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूकंप, चक्रवात और जंगल की आग जैसी आपदाओं की निगरानी में अंतरिक्ष तकनीक उपयोगी है, संचार, दूर दराज के क्षेत्रों तक संचार सेवाएं पहुंचाने में उपग्रह महत्वपूर्ण है, रक्षा और सुरक्षा, सीमा की निगरानी तथा रणनीतिक आवश्यकताओं में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य, दूरस्थ क्षेत्रों में टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन जैसी सेवाओं को समर्थन मिल सकता है। इसलिए अंतरिक्ष विज्ञान वास्तव में राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। अब सवाल यह है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे कहां जाएगी। भविष्य में भारत चंद्रमा पर और अधिक वैज्ञानिक मिशन भेज सकता है, मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों के अध्ययन की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। भारत की योजना चंद्रमा पर मानव मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशन जैसी महत्वाकांक्षा परियोजनाओं में भागीदारी की दिशा में भी आगे बढ़ने की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान का लाभ आम नागरिक तक पहुंचाना होगा। हमें ऐसे वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयार करने होंगे जो केवल नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि नई तकनीक और नए समाधान बनाने के लिए काम करें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा केवल रॉकेट और उपग्रहों की कहानी नहीं है, यह कहानी है संसाधनों की कमी से आत्मनिर्भरता तक की, असफलता से सफलता तक की, साइकिल पर रॉकेट के हिस्से ले जाने से चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाने तक की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के सपने से शुरू हुई यह यात्रा आज चंद्रमा और सूर्य तक पहुंच चुकी है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि सफलता केवल संसाधनों से नहीं मिलती, सफलता के लिए दृष्टि, मेहनत, वैज्ञानिक सोच और निरंतर प्रयास आवश्यक है। चंद्रयान 3 की सफलता ने हमें यह विश्वास दिया है कि यदि भारत ठान ले तो बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकता है। आज जब भारत अंतरिक्ष की ओर देखता है तो उसके सामने केवल चंद्रमा या मंगल नहीं है, उसके सामने पूरा ब्रह्मांड है। और शायद आने वाले समय में कोई भारतीय बच्चा अंतरिक्ष की ओर देख कर यह नहीं पूछेगा कि क्या भारत कभी अंतरिक्ष में जाएगा, बल्कि वह कहेगा भारत अंतरिक्ष में और कितनी दूर जाएगा। यही नए भारत का सपना है। जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय हिंद।
1: अभिषेक कुमार यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, शब्द सिर्फ हमारी भाषा का हिस्सा नहीं होते, ये हमारी सोच और हमारी बातों को एक खूबसूरत अंदाज देने का काम भी करते हैं। कई बार एक सही शब्द हमारी पूरी बात को ज़्यादा असरदार बना

0: देता है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के आज की यूथ डायरी में अपने शब्दकोश को जोड़ते हैं, जिसमें आज दो ऐसे नए शब्द हैं जो आपकी बातचीत और अभिव्यक्ति दोनों को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। तो हमारा आज का हिंदी का शब्द है संप्रेषण, जिसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं या संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना।
0: सरल शब्दों में कहें तो जब हम अपनी बात इस तरह दूसरों तक पहुंचाते हैं कि वह उसे समझ सके तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं। अगर इसके कुछ समानार्थी शब्दों की बात करें तो संचार, संदेश, प्रेषण, आदान प्रदान और संवाद इसके निकट अर्थ वाले शब्द हैं।
1: और इसे वाक्य में हम कुछ यूं कह सकते हैं, प्रभावी संप्रेषण किसी भी रिश्ते और कार्य क्षेत्र में बेहतर समझ विकसित करने में मदद करता है।
0: तो दोस्तों याद रखिए, संप्रेषण सिर्फ अपनी बात कहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी बात को सही तरीके से समझाने और सामने वाले की बात को समझने की प्रक्रिया भी है।
1: और हमारा आज का इंग्लिश का वर्ड है क्वेरुलस, QUERULOUS। इट मीन्स समवन हु इज क्वेरुलस इज ऑफन कंप्लेनिंग और एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन इन एन एनॉयड मैनर।
0: यानी ऐसा व्यक्ति जो बार बार शिकायत करता हो या छोटी छोटी बातों पर असंतोष जताता हो।
1: एंड इट्स सिनोनिम्स आर कंप्लेनिंग, विनिंग, ग्रम्बलिंग और डिससेटिस्फाइड। एंड इन सेंटेंस वी कैन से इट एज हिज क्वेरुलस एटीट्यूड मेड इट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू वर्क विद हिम।
0: एक और उदाहरण, द क्वेरलस कस्टमर केप्ट कंप्लेनिंग अबाउट द सर्विस, यानी वह असंतुष्ट ग्राहक लगातार सेवा को लेकर शिकायत करता रहा।
1: तो दोस्तों क्वेरुलस उस व्यक्ति या व्यवहार के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें लगातार शिकायत या नाराजगी का भाव दिखाई दे।
0: तो दोस्तों आज हमने सीखा संप्रेषण, यानी अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना, और क्वेरलस यानी लगातार शिकायत या संतोष जताने वाला व्यक्ति।
1: उम्मीद है आज के ये दोनों शब्द आपके शब्दकोश के साथ साथ आपकी बातचीत और अभिव्यक्ति को भी और समृद्ध बनाएंगे।
0: और दोस्तों अब जरा वक्त की घड़ी को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां आज की तारीख से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां दर्ज है। तो चलिए जानते हैं 17 अगस्त के दिन क्या क्या खास हुआ था इतिहास में।
1: आज ही के दिन 1982 में जर्मनी ने पहली व्यावसायिक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी का उत्पादन हुआ था। यह क्लॉडियो अराउर द्वारा बजाई गई शोपिन की वॉल्ट्स की रिकॉर्डिंग थी। फिलिप्स और सोनी की इस तकनीक ने आगे चलकर संगीत सुनने की दुनिया में डिजिटल क्रांति ला दी थी।
0: दोस्तों आज ही के दिन 17 अगस्त 2008 में अमेरिका के महान तैराक माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में इतिहास रच दिया। उन्होंने एक ही ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया और 1972 में बनाए गए मार्क स्पिट्स के 7 स्वर्ण पदकों के रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ दिया।
1: और आज ही के दिन 1858 में हवाई द्वीप समूह के होनोलुलु में बिशप एंड को नाम से पहला स्थायी बैंकिंग संस्थान शुरू हुआ था।
0: दोस्तों 17 अगस्त 1961 में हिंदी की जानी मानी कवित्री और लेखिका अनामिका का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। समकालीन हिंदी कविता में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली अनामिका की रचनाओं में स्त्री असीमता और सामाजिक सरोकार प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। उन्हें उनके कविता संग्रह टोकरी में दिग्नत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
1: दोस्तों अब बारी है जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे की।
0: हाँ होगा क्यों नहीं, आखिर ये हमारे श्रोताओं को देता है मौका सीधे हमसे जुड़ने का, यानी कि हमारे प्रश्नों का सही उत्तर देकर विनर्स बनने का मौका।
1: तो चलो फिर बिना देरी के बताते हैं हमारा आज का प्रश्न।
0: बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हमने आपसे जो कल प्रश्न किया था उसका सही जवाब क्या है और कल की विजेता कौन है।
1: तो दोस्तों हमने कल आपसे प्रश्न किया था, महिला हथकरघा बुनकरों को सम्मान में सृजन वॉइस फ्रॉम द लूम कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था, जिसका सही जवाब है वस्त्र मंत्रालय द्वारा।
0: और जिन साथियों ने सही जवाब दिया है वे हैं दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। इसके साथ ही प्रवीर चौहान खरगोन MP से हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो दोस्तों हमारा आपसे आज का प्रश्न है कि भारत में घरेलू ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, भारत में घरेलू ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है।
1: तो इस सवाल का जल्दी से उत्तर देकर बन जाइए आप भी विनर्स।
0: और आप अपना आंसर हमें भेज सकते हैं।

0: हमारा इंस्टा आईडी youthAIRvaranasi पर या फिर
1: हमें मेल भी कर सकते हैं आप, जो कि हमारी मेल आईडी है youthAIRvns@gmail.com पर।
0: और जब तक आप हमें आंसर भेज रहे हैं तब तक एंजॉय करिए ये सॉन्ग।

0: दोस्तों, अब बारी है रोजगार सूचना की। तो चलिए जानते हैं आज की रोजगार सूचना के बारे में। तो राजस्थान से स्थानीय स्वशासन विभाग ने सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत 24,752 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
1: आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि इच्छुक अभ्यर्थी 28 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी।
0: और अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट isg.rajasthan.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल जयशाली, सड़क पर सुरक्षित रहना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि दूसरों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। ट्रैफिक नियमों पर पालन करने की हम कर कर हम कई दुर्घटनाओं से भी बच सकते हैं।
0: याद रखिए, सड़क पर जल्दबाजी नहीं, समझदारी जरूरी है। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को पहले रास्ता दें और कभी भी नशे की हालत में वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करेंगे, स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के कार्यक्रम आपके साथ मैं मोनिशा,
0: और मैं जयशालिनी।
1: हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

युवा साथे भी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युववाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: लगातार समाचारों के साथ ही हम मुझे प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में प्रदेश के 78,000 से बेसी उचित दर विक्रेता लोगों के उनका लाभांश 90 रुपया से बढ़ा के 125 रुपया प्रति क्विंटल कई रेलवे से जुड़े समारोह में शामिल हुए हैं। इस दौरान वहाँ के सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणालियों का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहने की वर्ष 2017 में ई पॉस मशीन लगने से पारदर्शिता बढ़ेगा।
1: उचित मूल्य विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा ठीक हो, इसी के लिए 2017 में हम लोगों ने ई पॉस मशीन लगानी प्रारंभ की थी। हम लोगों ने इस समय कहा था कि नहीं, सिंगल डोर स्टेप होगा, एफसीआई के गोदाम से सीधे कोटे की दुकान पर फेयर प्राइस शॉप तक हम सिंगल डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम करेंगे, बीच में नहीं, सीधे पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई। परिणाम क्या है? परिणाम इसी से आते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाई गई, आपका सम्मान बढ़ा।
0: प्रदेश के अलग अलग जिलों में भरी आयोजन में जनप्रतिनिधियों हिस्सा लेने हैं। जिला स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण कर गए। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करे बदे बैंकिंग सुधार पर जल्दी उच्च स्तरीय समिति गठित करी। ये जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन मौका पर देंगे। वहां के कहने की ये समिति कई गो मुद्दन अनुशंसा के ध्यान में रखकर बैंकिंग सुधार बदे भावी कार्य दिशा तय करी।
2: ऑन द बेसिस ऑफ वेल रिसर्च
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगी। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आय से बेसी संपत्ति मामला में राहत दे दी हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना का पीठ आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहलस की वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय का ज्ञात स्रोत से बेसी संपत्ति के मामला में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहलस की वो राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में उच्च न्यायालय के समक्ष कौन रिपोर्ट दाखिल न करें। यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2026 का पूरक परीक्षा अंक सुधार परीक्षा, वहीं इंटरमीडिएट 2026 के पूरक परीक्षा का नतीजा घोषित कर दे रहे हो। परीक्षा का नतीजा बोर्ड के वेबसाइट upmsp.edu.in पर देखा जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषय अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र बदे दोबारा परीक्षा करोले का घोषणा कर दिया हो। ये तीनों विषयों के पेपर में कई तरह के त्रुटियों का शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। प्रदेश भर में नाग पंचमी का त्योहार आज रिवाज के मुताबिक श्रद्धा भक्ति के माहौल में मनावल जा रहा बा। सावन के तीसर का सोमवार और नाग पंचमी त्योहार पर शिव मंदिरों में भोरे से श्रद्धालुओं के भारी भीड़ हो। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु और कांवड़िया लाइन लगा के भगवान शिव के जलाभिषेक कर रहा है।
1: सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर काशी में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। कांवरियों और श्रद्धालुओं का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से शिवालयों और मार्गों पर गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा हुई। पुष्प वर्षा से कांवरियों के चेहरे खिल उठे और वातावरण भक्ति में हो गया। नाग पंचमी पर प्राचीन नाग कुआं मंदिर कारकोटक वापी में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने नाग देवता

0: नागेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन किया। नागकुंड में दूध जल और लावा अर्पित करने की परंपरा निभाई गई। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: नाग पंचमी या सावन के तिसरका सोमवार पर राम नगरी अयोध्या में श्रद्धालु आज सरजू नदी में आस्था कर डुबकी लगाने आ प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंच के भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कैले। नाग पंचमी के मौका पर आज गोरखपुर पहुंचल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ अपने गुरु का पूजा अर्चना कैले। वहां के गोरखपुर में कई गो कार्यक्रम में शामिल होके पहुंचल है। समाचार पूरा भई, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.5 चैरमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में नागपंचमी का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व विषय पर प्रोफेसर आशा यादव की बातचीत के अलावा सुनेगा हीरालाल यादव और साथियों का गाया लोकगीत। 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे पंडित सीताराम सिंह। 10:00 परिचर्चा का प्रसारण होगा, विषय होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग, अवसर या चुनौती। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर श्रद्धानंद, डॉक्टर उपासना राय, प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह और पंकज श्रीवास्तव। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं डॉक्टर राम शंकर का गायन। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 6:10 पर। 7:00 7:31 पर रसरंग और 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कल यानी 18 अगस्त सन 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में बैंगन की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आराधना में 6:10 पर। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियां और बचाव के उपाय, इस विषय पर लीजिएगा जानकारी विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनते हैं 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत 7:31 पर सुनिएगा विदुषी कलाराम नाथन का वायलिन वादन। दिन में 12:45 पर और 10:30 पर आप सुन सकते हैं श्याम लाल का शहनाई वादन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12:00। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम अंगनैया में अन्य कार्यक्रमों के अलावा सुनिएगा गीत संगीत। 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अवधि गीत। युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह 5:15 पर। 6:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में सब्जियों के बीज संरक्षण एवं जर्म प्लाज्म का महत्व विषय पर डॉक्टर अर्चना सान्याल और सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा सुनिएगा जगन्नाथ और साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं की गाय लोकगीत आप सुन सकते हैं 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे अशोक खोसला। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा 9:30 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित

0: होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटी से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज में फिल्म सावन को आने दो का गीत। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार राजकमल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म उपहार से। आवाज मुकेश और साथियों की है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अयां भारतीय युगलम एम आर अर्जुनः सहैव हरिहरन अमसा करुणन च नवदिल्ल्यां पुरुषयुगलवर्गस्य द्वितीय चरणे प्रविष्टवन्तौ इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

पंचो राम राम। पंचो देखा भारत जौन अपन देश है ना, उनमें तरह तरह के देखा तीज त्योहार समय समय पर आवत रहला। आ सबकर देखा अपन अपन महत्व है, आ सबके अपन अपन मनाओ का देखा तरीका भी है। आज देखा सावन महीना का जौन है ना कि शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि है। आज नाग पंचमी का त्यौहार हुआ, यानी कि पचैया का त्यौहार है। सब किसान भाई लोग जो ना कि ओके धूमधाम से सवेरे से लेकर वहीं तक मनावत हुआ। आ देखा जितना तीज त्यौहार होला ना, वो कुछ न कुछ संदेश लेकर के सबके जीवन में आवेला। आ सबकर अपन अपन महत्व हुआ ये त्यौहार में। देखा भैया सवेरे सवेरे सब लोग देख लिया ना कि नहाए धोए के एकदम जो है कि जितना उनके आसपास में मंदिर हुआ, चाहे हनुमान जी के बाय, शंकर भगवान के बाय, डी बाबा के बाय, डिहवारी माई के बाय, सब लोग अपन जा करके दूध अलावा जो ना ले जा करके भगवान के चढ़ावत हुआ, नाग देवता के चढ़ावत हुआ, ताकि नाग देवता का जो कृपा बने उनके परिवार के ऊपर बनल रहे। आ एक बाद देखा यो भाई कि जब दूध अलावा चढ़ा लिया ना, तो बहुत लोग देखा यो होला कि कहीं कहीं जलेबी भी खाइल जाले। इस त्यौहार का मान्यता हुआ कि जलेबी से लोग अपने दिन का शुरुआत करें ना। तो ये जैसे जगह जगह का अपन अपन मान्यता हुआ, तो ये तरीके से देखा एकर शुरुआत होले जो ना नागपंचमी का। आ इहो बाय कि देखा सावन का महीना बाय, तो अगर झलुआ ना अगर लोग आज के दिन झूलें, आ झलुआ के संगे संगे अगर कजरी ना गावें, तो देखा त्यौहार थोड़ा फीका लगेला। आज देखा पूरा दिन आ पूरा रात जो ना कि लोग झलुआ झूली हैं। आ देखा महिला जो लोग जन है ना, वो अपन कजरी गाय के त्यौहार के मनई हैं। आ कुछ लोग तो देखा दिन में मना ले हुआ, आ पटेंग इतना तेज मारत हूँ कि देखा भैया एक तो यो कहब कि देखा झलुआ झूलें, लेकिन देखा उम्मीद ध्यान रखा के जरूरत है कि बच्चन के बैठाए के या के बुजुर्ग बा या के बीमार बा ओके बैठा के बहुत तेज पटेंग ना मारे, नहीं तो देखा उनके भैया उल्टी दस्त हो सकेले, उनके चक्कर आ सकेला। तो ये सब का भी ध्यान रखा ताकि जो है कि त्यौहार जो है खराब ना हो। तो भैया देखा सावन के महीना में चारों लंगे जब हरियाली हरियाली है, तो त्यौहार मनावे के भी तरीका सब लोग का देखा बढ़िया होवे के चाहिए। सबके देखा प्रेम मोहब्बत से लेकर के चल भी त्यौहार का एक संदेश हुआ। आ संगे संगे देखा इहो बाय कि दिने में जितना अखाड़ा बाय वहाँ देखा कुश्ती भाई होत रल है। आ कुश्ती के संगे देखा कबड्डी बाय, खो खो बाय, ऊंची कूद बाय, ये कुल देखा लोग दिन भर अपन कहना। आ देखा भैया एक बात और बताइब ना कि ये कुल जितना ये कुल शारीरिक संस्थाओं का प्रतियोगिता है ना, इनमें जितना लोग प्रतिभागी रहना है पूरे गांव एरिया के लोग जुटल बाणे, और उन्हें लोग के बीच में अगर इनकर जैसे जीत जात बाणे कोनो चीज़, आ जीतले के बाद जो ना कि सबके सामने इनके गमछा पहनाए के इनका सम्मान होला जे जीते लायक के, तो उस सम्मान देखा भैया ऐसा होला वो विजेता के लिए कि जैसे कोनो भारत रत्न कम नहीं बा। तो गांव के सामने पूरे उनके सम्मानित करल जाला, उनकर सम्मान बढ़ेला। तो इहो एक ये त्यौहार का जो एक विशेष जो ना कि रूप से मान्यता हुआ कि लोग अपने कला का भी प्रदर्शन करें ना, और लोग जो ना एक दूसरे से मिल करके प्रसाद वगैरह भी वितरित करें ना। आई हो देखा भैया जाना देखा जरूरी है कि जो नागपंचमी के त्यौहार है वो काहे बदे मनावल जाला। देखा भैया लोग जो ना किया कि इनमें तरह तरह का मान्यता हुआ, देखा सबसे ज़्यादा मान्यता तो यह हो कि

लोग जो है नाग देवता के लिए अपन जो ना दूध अलावा अर्पित करना, ताकि उनके परिवार के ऊपर नाग देवता की कृपा बनर रहे। आस्तीन मुनि के अनुसार तो देखा ही है कि जब राजा जनमेजय अपने पिता परीक्षित के मौत का बदला ले बदे सर्प यज्ञ कहीं, तो उस सर्प यज्ञ में जितना कुल सर्प लोग हुआ सब जाके गिरे लगना आ जर जर के मरे लगना।

0: आ जर जर के मरे लगना। जब मरे लगना तो धीरे धीरे सर्प जाति के जो है कि पूरा जातीय खत्म हो के स्थिति में आ गई। वो स्थिति में जो है कि आस्तीन मुनि जा करके वो यज्ञ के रुकवना और नाग वंश का रक्षा कहना। तो वही समय से देखा नाग वंश का जो है कि रक्षा भइल आ वही मान्यता के हिसाब से लोग नाग का पूजा करे लगना। आ वो मान्यता आज भी चलल चली आओ था। देखा कहीं कहीं यो मान्यता भैया कि भगवान श्री कृष्ण जो हुआ कालिया नाग के हरा के यमुना जी का रक्षा कहना आ ओकरे बाद जो कि नाग पूजा का शुरुआत भइल। आ इहो मान्यता हो कि भैया कि किसान जो हुआ कि सावन के महीना में खेत से सांप जब निकले लगे ना तो सांप लोगन से अपन रक्षा करे बदे अपन नुकसान कोनो न होखे ये बदे भी आज के दिने जो ना कि नाग का पूजा लोग करे ना किसान भाई लोग ये सब को मान्यता हुआ। तो भैया ये तो देखा एकर मान्यता हो गई। लेकिन ये कहब ना कि त्यौहार जौन भी अपने देश में हुआ सब त्यौहारन का अपन अपन महत्व है। आ सब त्यौहार जो ना कि हम सबके प्रेम से भाईचारा से मोहब्बत से आपस में मिल के मनावे के चाहिए ताकि वो त्यौहार के जौन महत्व है ना वो बनल रहे। आ त्यौहार के संगे संगे यो कहब कि जौन आपसी सामाजिक जौन सौहार्द हुआ यही बहाने देखा चार आदमी एक जगह जुटे ना तो समाज के जौन सामाजिक जौन समीकरण होला उहो लोग एक उहो जौन एक जगह जुटले से लोग का बढ़ेला। तो सामाजिक प्यार और सामाजिक एकता भी एकर प्रतीक हुआ ये 30 त्यौहारन का। तो ये लिए हम सबके जौन ना कि नाग पंचमी के त्यौहार या और कोनो जो त्यौहार है ओके बहुत प्यार मोहब्बत से मनावे के चाहिए। देखा भैया इतना जितना हम जानकारी ले उतना तो हम बता दिली। लेकिन देखा अब जो ना कि बढ़िया से बताओ बदे देखा प्रोफेसर आशा यादव के ये वार्ता है हुआ नाग पंचमी का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। तो देखा ही प्रोफेसर आशा भाई नहीं ये बढ़िया से बताइए कि नागपंचमी का धार्मिक का सांस्कृतिक महत्व का है। तो तुहु लोग सुना हमहू सुनत ही।
1: भारतीय संस्कृति ने पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सभी के साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, वृषभोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है, कई बहनें तो कोकिला व्रत रखती हैं जिसमें कोयल के दर्शन होने या उसका स्वर कान में पड़ने पर ही व्रत का पारण किया जाता है। वट सावृत्ति जैसे व्रत में बरगद की पूजा होती है। नीम के वृक्ष में देवी शीतला का वास मानकर नवरात्रि में नीम वृक्ष में जल देने व पूजा का भी विधान है, परंतु श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के प्रमुख त्योहार नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जब हम नाग की पूजा करते हैं तब तो जैसे हमारी भारतीय संस्कृति की धार्मिक विशिष्टता अपने चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच जाती है। गाय, बैल, कोयल, बरगद, नीम इत्यादि की पूजा द्वारा इन पशु पक्षियों व वनस्पतियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने की बात तो समझ में आती है, क्योंकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये सभी हमारे दैनंदिन जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन नाग हमारे किस उपयोग में आता है? उल्टे यदि वह काट ले तो जान तक जा सकती है, इसलिए हम सब उससे डरते हैं। इसी डर से नाग पूजा आरंभ हुई होगी ऐसा मैं सोचती हूं, परंतु यह मान्यता हमें भारतीय संस्कृति के अनुसार सुसंगत नहीं लगती। नाग को देव के रूप में स्वीकार करने में हमें आर्यों के हृदय की विशालता का भान होता है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् इस गर्जना के साथ आगे बढ़ते हुए आर्यों को भिन्न भिन्न उपासना करते समूहों के संपर्क में आना पड़ा था। वेदों के प्रभावी विचार उनके पास पहुंचाने के लिए आर्यों को बहुत श्रम भी करना पड़ा था। विभिन्न समूहों की उपासना पद्धतियों में होने वाले अंतर के कारण होते विवाद को यदि निकाल दिया जाए तो मानव मात्र वेदों के तेजस्वी व भव्य विचारों को ही स्वीकार करेगा। इस बात पर आर्यों की अखंड श्रद्धा थी। इसी को सफल बनाने के लिए आर्यों ने अलग-अलग समूहों में चलती विभिन्न

देवताओं की पूजा को स्वीकार किया और उन सभी अलग अलग समूहों को उन्होंने आत्मसात करके अपने में मिला भी लिया। इन्हीं समूहों को स्वीकार करने के कारण ही हमें नाग पूजा प्राप्त हुई होगी ऐसा लगता है। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, गरुण पुराण तथा अन्य हिंदू ग्रंथों में भी नागपंचमी का उल्लेख मिलता है। पुराणों में नाग वंश की उत्पत्ति का भी वर्णन मिलता है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र कश्यप ने प्रजापति की पुत्रियों कुटु और विनता से विवाह किया। इनमें कुटु से ही नाग वंश की उत्पत्ति हुई थी। गरुण पुराण में नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवताओं को दूध और मिठाई अर्पित करने के कारण का भी वर्णन है। ग्रंथ के अनुसार इसका कारण यह है कि इससे हमारे जीवन में सुख व समृद्धि आती है। एक अन्य मान्यता नागों के राजा तक्षक की कहानी पर भी आधारित है, जो महाभारत में हमें मिलती है। राजा तक्षक ने राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित की हत्या कर दी थी। इस घटना से क्रोधित होकर जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य था नाग वंश को संसार से मिटा देना। जब यह यज्ञ चल रहा था, तभी आस्तिक नामक ऋषि आए और उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। जिस दिन आस्तिक ऋषि ने यज्ञ में हस्तक्षेप किया, उस दिन को नागपंचमी के रूप में उद्यापित किया जाने लगा। नागपंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा यह भी है कि इसी दिन प्रभु कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। चूंकि भगवान कृष्ण ने गोकुल के लोगों की रक्षा के लिए इस दिन कालिया नाग को इस दुनिया से विदा कर दिया था, इसीलिए भक्त उस दिन को नागपंचमी के रूप में मनाते हैं। भारतवर्ष में सर्प पूजन की धारणा के पीछे एक कारण यह भी है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सांप खेतों का रक्षण करता है, इसीलिए उसे क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। इसके साथ ही सांप हमें कई मूक संदेश और भी देता है। उसके गुणों को देखने की हमारे पास शुभ एवं गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी ही शुभ दृष्टि थी, इसीलिए उन्हें संसार की प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख अवश्य मिली। सामान्यतया सर्प किसी को अकारण नहीं काटता, उसे परेशान करने या छेड़ने वाले को ही वह नसता है। सांप भी प्रभु की सर्जना ही तो है, वह यदि कोई उसे यदि कोई हानि पहुंचाए तो यह उचित नहीं है। वह यदि कोई हानि पहुंचाए बिना सरलता से जा रहा हो तो उसे मारने का हमें कोई अधिकार नहीं। जब अकारण ही व्यक्ति उसके प्राण लेने का प्रयत्न करता है, उस समय अपनी रक्षा में यदि सर्प डस ले तो उसे दुष्ट नहीं कहा जा सकता। सर्प को सुगंध अति प्रिय होती है। चंपा के पौधे में लिपट कर वह रहता है या चंदन के वृक्ष पर वह निवास करता है। केकड़े के वन में भी वह चलता फिरता रहता है। चूंकि सर्प को सुगंध प्रिय है, इसलिए भारतीय संस्कृति को भी सर्प प्रिय है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सद्गुणों की सुगंध आती ही है, सुविचारों की सुवास भी आती है। वही सुगंध एवं सुवास हमें भी प्रिय होनी चाहिए। देवों और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में साधन रूप बनकर वासुकी नाग ने दुर्जनों के लिए प्रभु कार्य के निमित्त कारण बनने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। दुर्जन मानव भी अगर सच्चे मार्ग पर आए तो वह भी सांस्कृतिक कार्य में बड़ा योगदान कर सकता है, और दुर्बलता सतत खटकती रहने पर ऐसे मानव को अपने किए सत्कार्य का अभिमान भी निर्मित नहीं होता। यही कारण है कि दुर्जन भी यदि भगवत कार्य में जुड़ जाए तो प्रभु उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं। इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने सांप को अपनी ग्रीवा में धारण करके तथा

0: विष्णु ने शेष शैया पर शयन करके सिद्ध कर दिया है। समग्र सृष्टि के हितार्थ बरसने वाली वर्षा ऋतु के कारण अपने बिलों से निर्वासित हुआ सांप यदि हमारे घरों में अतिथि बनकर आता है तो उसे आश्रय देकर कृतज्ञ बुद्धि से उसका पूजन और सत्कार करना हम मनुष्यों का अप्रतिम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए नागपंचमी का उत्सव श्रावण मास में ही रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत औचित्यपूर्ण कार्य किया है। जहां तक काशी का प्रश्न है, काशी में भी नागपंचमी के पावन पर्व पर नागकुआं नामक पवित्र स्थान जो जैतपुरा में स्थित है वहां एक बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुण जी के भय से बालक के रूप में संस्कृत की शिक्षा लेने काशी पधारे थे, परंतु गुरुपत्नी की सखियों से तक्षक रूपी बालक के बारे में गरुण जी को जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया, परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुण जी ने तक्षक नाग को अभयदान भी कर दिया। उसी समय से इस स्थान पर नाग की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन जो भी व्यक्ति पूजा अर्चना करके नागकूप का दर्शन करता है उसकी जन्म कुंडली के सर्पदोष का निवारण हो जाता है। नागपंचमी के ही दिन गांवों व कस्बों में कुश्ती, दंगल तथा अन्य खेलकूद का आयोजन भी होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी तालाब में स्नान कराया जाता है। इस दिन नाग देवता के दर्शन के विधान के साथ ही सांपों की बॉबियों की पूजा तथा वहां सुगंधित पुष्प, दूध व चंदन चढ़ाने की भी परंपरा का निर्वाह गांवों में आज भी होता है। इसके अतिरिक्त एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा का जाप करने का भी नियम है, जिससे सर्प विष दूर हो जाता है। बहुत से लोग इस दिन उपवास रखते हैं जिससे सर्पदंश का भय दूर होता है। ऐसी भी मान्यता है कि सांपों की याददाश्त और सूंघने की क्षमता बड़ी तीव्र होती है, इसलिए वे ऐसे व्यक्तियों को अवश्य याद रखते हैं जो उन्हें सुगंधित पुष्प, दूध, धान का लावा या मिठाई आदि चढ़ाकर पूजते हैं, इसलिए वे उन पर कभी भी हमला नहीं करते। नागपंचमी के दौरान जमीन भी नहीं खोदने का विधान है, ऐसा करने से सर्पकुल को हानि हो सकती है। नागपंचमी को भरतृपंचमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं नागों को दूध पिलाकर अपने भाइयों की किसी भी खतरे से रक्षा करती हैं। इस प्रकार नागपंचमी पर्व व उसकी पूजा अर्चना यह दर्शाती है कि हम मनुष्यों को सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, किसी भी जीव के प्रति उदासीनता का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे जीव भी हमारे जीवन संचालन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने भी हमें वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र देकर मनुष्य के साथ ही प्राणी मात्र से भी प्रेम करने की प्रेरणा दी है। नागपंचमी का पर्व इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। नागपंचमी को मनाने के कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन यह पर्व इस तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट करता है कि हमारी संस्कृति समग्र विश्व को कुटुंब मानकर हिंसक प्राणियों के प्रति भी वैर वृत्ति न रखने की, उनके प्रति सद्भाव जगाने की तथा उन्हें अभयदान देने की ओर संकेत करती है। आज के विसंगतिपूर्ण दौर में राग द्वेष तथा विनाश की ओर दौड़ते इस विश्व में नागपंचमी जैसे पर्वों व उत्सवों के माध्यम से भी जो शांति एवं प्रेम कायम है वह भारत देश की सनातन संस्कृति तथा भारत के ऋषि मुनियों व संतों द्वारा प्रतिपादित इसी प्रेम संदेश का ही प्रभाव है। अंत में आप सभी श्रोताओं को नागपंचमी पर्व के शुभस्करी कामनाओं के साथ यह वार्ता यही समाप्त होती है।
1: पंचो देखा ई प्रोफेसर आशा यादव बहन के देखा वार्ता रले नागपंचमी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आ देखा ई बहिन बतौनी है कि देखा।

जो नाग देवता लोग होना ना, उनकर पूजा आज के दिन काहे होले, ओकर काका विधान हुआ। आ देखा एक बात सबसे बढ़िया बतौनी है कि कौनो भी नाग जोन हुआ ना, ऊ केहू के बिना कारण के ना काटे ना। अगर कहीं ये तरह का कोई जात है, कोनो सांप या नाग जोन है, तो उनके रास्ता देख के उनके जाए देवे के चाहिए, उनके छेड़े के न चाहिए। आ जब छेड़बा तो फिर उनके परेशान करबा, तो देखा उनकर मजबूरी है कि अपने रक्षा में तोके वार करबे करिया। तो देखा ये तरीके से जो है ना कि नाग देवता लोग के सम्मान का रक्षा करे के चाहिए, और उनके अकारण जो है उनके हानि ना पहुँचाओगे चाहिए। तो देखा ही तब प्रोफेसर आशा बहन का जो है कि वार्ता हो गई। लेकिन अब किसान भाई लोग सोचत हुए कि खाली नागपंचमी का बात करत हूँ, जब से आलू हूँ तब से कुछ मन मनसाएं ना करावत हूँ। तो देखा मन मनसान हम कराओ जाते ही, देखा ही हीरा लाल यादव और उनकर साथी लोग हुआ, तो उनका गाँव नहीं सुना, हम सुना थी।

सोनवा का चिराई हमार पावन देशवा, देखाई हीरालाल यादव और उनका साथी लोगन के, देखा कितना बढ़िया देशभक्ति गीत रला। अब मन फरहर हो गया एकदम से कि भैया देखा देश से बढ़ के कुछ नहीं हुआ, देश का देखा अपने सम्मान ऊंचा रही ना, तो हमहन जौन ओकर नागरिक है जाए तो हमहनों का जौन की इज्जत बढ़ रही, तो सबसे पहले देश हुआ ओकरे बाद हमन है जा। तो देखा ई गौनई तो हो गई, लेकिन देखा इहो है कि कल जौन अपने कार्यक्रम में जौन कार्यक्रम प्रस्तुत करल जाइए ओकरी भी जानकारी हम अपने किसान भाई लोग के दे दें। देखा कल सवेरे 6:05 पर जौन अपन खेती की बातें कार्यक्रम होला, ओमें बैगन का खेती विषय पर जानकारी दी हैं अपने दिनेश कुमार सिंह भैया। आ साझे के 6:30 पर जौन अपन किसान वाणी कार्यक्रम होला, ओमें देखा बातचीत सुनवावल जाई सब्जियन के बीज का संरक्षण और जर्म प्लाज्म का महत्व, ये विषय पर डॉक्टर अर्चना सान्याल से अपने सतीश कुमार यादव भैया बातचीत के लिए हुआ। बड़ी महत्वपूर्ण देखा ये बतकही हुआ किसान भाई लोग एक के जरूर सुनिया। आ देखा एक बात और कहा हमने किसान भाई लोग कि देखा भैया बरसात का मौसम चला था, अब बरसात के मौसम में देखा बड़ी बौझ बचाए के रहे के जरूरत था। ये महीना ऐसा होला ना कि कहल गया ना कि सावधानी हटल आ दुर्घटना घटल। तो अगर देखा साँझे बिहानी अगर देखा बिया दिन में कब जोने भी टाइम अगर खेते बाड़ी लोग जात हुआ तो कोशिश करें कि देखा साँझ होए से पहले या साँझ होत होत किरीन डूबत डूबत जो है कि अपने घर आ जा लोग। अगर ना भी आ पावत हुआ तो देखा हाथे में देखा गोजी डंडा और देखा कौनो रोशनी देवे वाला लाइट या टार्च जोन बाय ओके भी हाथ में ले ले रहा, आ चलत रहा तो गोजी डंडा से ठोकत रहा जमीन पर, ताकि देखा भैया ये गरीब खेते में पानी भर गया है बरसात होते देखा बढ़िया से आजो भई रहे, आ भर जला जब पानी ना तो देखा खेत में जौन बिल रहले ओकर देखा जौन जीव जंतु हुआ निकल के बाहर आवाना, तो ऊ तो के हानि ना पहुँचाव ये लिए देखा उनके भी सजग होए का मौका दे दा कि केहू आवत है ठोकबा टटैबा तो देखा उनके पता चल जाए कोई आवत है तो वो अपन स्थान पकड़ ली हैं। तो ये तरीके से देखा मुँह सुरक्षित रह के आ जीव जंतु भी सुरक्षित रही हैं, आ सब लोग सही से अपने अपने जगह रही हैं। आ देखा भैया यो कहब कि रात बिरात में देखा अगर खटिया के नीचे अगर गोजी डंडा रख ले हुआ तो झटका में मत उतरा, पहले एक बार झांक ला कि कुछ हो तो नहीं ओकरे बाद पैर रखा तब जो न कि सुरक्षित तरीके से जो न उतर के जो न काम करके करा। ये तरीके से देखा भैया बच बचाव करके रहले से बरसात के मौसम बढ़िया से जो न गुजर जाई। आ देखा ही कहम ना कि जैसे हम समय से आए ना वैसे हम समय से जाए के भी चाहिए। तो देखा हम देखा अपन छाता ई देखा गोजिए डंडा लाइट ये तीनों चीज़ हम उठाए के पंच लग से विदा लेते थे तो पंचो राम राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 241.54 यानी 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में फिल्म आन मिलो सजना का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कामचोर से। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं अमित कुमार की आवाज में फिल्म दूर का राही से। इस गीत को लिखा है इरशाद ने और धुन तैयार की है किशोर कुमार ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार सीमा यादव पुत्री झगड़ू यादव, सीमा यादव सूजाबाद रामनगर थाना रामनगर जनपद वाराणसी की रहने वाली हैं। ये उन 9 जुलाई सन 2026 से लापता हैं। सीमा यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 28 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट सामान्य है, ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेती हैं। सीमा यादव के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक और सूचना है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार बॉबी पत्नी इंद्रेश कुमार, बॉबी ग्राम पटना थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र की निवासिनी है। बॉबी 11 जून 2026 से लापता हैं। बॉबी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 22 वर्ष, लंबाई 150 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है, एक हरा बदन है, चेहरा गोल है, ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेती हैं। बॉबी के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में नई ई पॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को बढ़ाकर किया गया 125 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए जाने पर दिया बल। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और चित्रकूट में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उचित दर विक्रेताओं के लिए नई ई पॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का लखनऊ से शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने प्रदेश खाद्य वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदेश पर उचित मूल्य विक्रेताओं से जुड़ी दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है, जहां दुकान और वेयर हाउस की सुविधा दी जाएगी।
1: आप सभी अपने यहां अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़वाई। धनराशि का आवंटन सरकार आपको करेगी। राशन वितरण का काम तो आप 1 सप्ताह 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन आप उस वेयर हाउस का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। अतिरिक्त इनकम उससे भी कमा सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद भी अगर हम वहां रखेंगे, उस पर्व और त्योहार में अगर हम स्थानीय उत्पाद को भी प्रायोरिटी देते हैं, हमारा जो स्थानीय कारीगर स्थानीय हस्तशिल्पी उससे प्रोत्साहित होगा। उसके माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।
0: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कन्नौज, बलरामपुर, कौशाम्बी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात और बदायूं सहित विभिन्न जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। कोटेदारों में लाभांश बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में नागपंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए सरकार की खेल संस्कृति को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में योजनाओं के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नव विकसित ऑनलाइन पोर्टल potato.uphorticulture.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लाभ के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1,000 करोड़ रुपये का भामाशाह भाव स्थिरता कोष, भंडारण शुल्क में छूट और आलू के बीज पर छूट शामिल है।
2: राज्य में भामाशाह भावांतर योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1,000 करोड़ का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। निर्धारित लागत मूल्य का जो अंतर होगा उसका 25% अनुदान राज्य के किसानों के खाते में DBT के माध्यम से अंतरित हो जाएगी। जो आलू किसानों के द्वारा अपना आलू शीत गृहों में भंडारित किया गया है, उसके किराए में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब के दर से राज्य सरकार उन्हें अनुदान
0: DBT
2: के माध्यम से देगी।
0: उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा है कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई न करे। शीर्ष अदालत ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय से भी कहा है कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के

0: समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया गया है। वहीं 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और 8 राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में उत्तर प्रदेश के अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश से रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरीश द्विवेदी और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं डॉ भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। सहारनपुर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन हापुड़ जिले की 3 तहसीलों के 899 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। भर्ती रैली 4 सितंबर तक चलेगी। नागपंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक तरीके से श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पुष्प वर्षा से कांवड़ियों के चेहरे खिल उठे और वातावरण भक्तिमय हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। मार्कंडेय महादेव और महामृत्युंजय मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। नागपंचमी पर प्राचीन नागकुआ मंदिर कारकोटक वापी में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने नाग देवता और नागेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन किया। नागकुंड में दूध, जल और लावा अर्पित करने की परंपरा निभाई गयी। सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: वहीं बाराबंकी, अमेठी और जौनपुर के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिव भक्तों तथा कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं लखनऊ, गोरखपुर, पीलीभीत, आगरा, अमरोहा, फर्रुखाबाद और जौनपुर में भी प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि विभाग द्वारा इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है।
2: कल भी भारी वर्षा का जो सदन पोर्शन है और तराई बेल्ट है वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि लो प्रेशर धीरे धीरे मूव होकर उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं 20-21 को फिर से जो उत्तर प्रदेश के साउथ वाले हिस्से हैं बुंदेलखंड विंध्या रीजन से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना हो सकती है। तापमान में जैसा कि 3-4 डिग्री की गिरावट हुई है यही क्रम में कल भी रहेगा। बाकी परसों से हल्का हल्का खुलेगा, हालांकि हल्की हल्की बारिश का सिलसिला बनेगा।
0: प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर घाटों के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में नई ईपॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को बढ़ाकर किया गया 125 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। युवा शक्ति।

0: संस्कृति को सही राह दिखाने के लिए खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए जाने पर दिया बल। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और चित्रकूट में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म दूध का कर्ज का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार अनु मलिक।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म वारिस से। आवाज लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की है, शब्द रचना वर्मा मलिक की है और संगीत उत्तम जगदीश का।

रसरंग कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आइए सुनते हैं फिल्म मंजिल से। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं योगेश और संगीतकार राहुल देवबर्मन।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। मीडियम विफ 241.5 चार मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं पंडित सीताराम सिंह।

मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म सितमगर का गीत। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है, सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म घर से। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार राहुल देवर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म है आंसू बन गए फूल। गीतकार हैं तेज भोपाली और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म गुमराह से। आवाज आशा भोसले और महेंद्र कपूर की है, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत रवि का।

रसमाधुरी कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आई सुनते हैं फिल्म फिर वही रात से। आवाज किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की है। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: मानव मात्र में भेद क्यों?
2: समानता, सह अस्तित्व, हर जीव का अधिकार।
1: अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें दिखाई सत्य, शांति, प्रेम और अहिंसा की राह।
3: आइए इस राह पर चलने का संकल्प लें, सत्याग्रह के मूल मंत्र को बनाएं लक्ष्य प्राप्ति का आधार।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त।

0: और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट्रे होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसी

0: एल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

0: यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
2: केंद्र भद्रक बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9. The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms. Directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul's test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media

0: आईएसआई की हिमायत वाले दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को तबाह कर दिया है। जनाब शाह ने बताया कि हुकूमत ने इस ग्रुप के 200 से ज्यादा कारिंदों को गिरफ्तार करते हुए उनके मुमकिन हमलों के मंसूबों को भी नाकाम बना दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर तालमेल पर मबनी कार्रवाइयां अंजाम देते हुए इस नेटवर्क को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के भारत के अज़्म की उम्दा मिसाल है। पेशे एक रिपोर्ट।
1: सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस महीने की 12 तारीख को रियासती पुलिस फोर्सेज के साथ मिलकर कई रियासतों में तालमेल पर मबनी ऑपरेशन के जरिए हकीकी वक्त पर मबनी इंटेलिजेंस इश्तराक की बिना पर शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी है। ये नेटवर्क यौम आज़ादी के आसपास खलल डालने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान 14 रियासतों से तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 अफराद शामिल हैं। आईएसआई की माली एयानत वाले इस ग्रुप से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। ये नेटवर्क मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में मुकीम आईएसआई की हिमायत वाला दहशतगर्द ग्रुप है, जो भारत में ग्रेनेड, आईईडी, पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड किलिंग्स में मुलव्विस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पुलिस, दिफाई तनसीबात और मजहबी मकामात की रेखी के लिए मुकामी कारिंदों को रकम अदा करता था ताकि वो जासूसी के लिए सीसीटीवी कैमरे नसब कर सकें। शहजाद भट्टी नेटवर्क मामले में अब तक 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: हर घर तिरंगा मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। हर घर तिरंगा मुहिम के पांचवें साल ने एक तरफ जहां तिरंगे को लाखों भारतीयों के दिलों से जोड़ा, वहीं सरहद पार भारतीय भी तिरंगा लहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए यकजा हुए। मुल्कगीर पैमाने पर मनाई गई इस मुहिम ने शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को जगाया, कौमी यकजहती को मुस्तहकम किया और भारत के सकाफती विरसे को फरोग दिया। साल 2022 में शुरू हुई हर घर तिरंगा मुहिम अवामी शमूलियत वाली मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक के तौर पर उभरी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हर घर तिरंगा मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल की तकमील से मंसूब रही। इस मुहिम ने हुब्बुल वतनी के मुनफरिद इम्तजाज के तहत कौमी परचम और कौमी गीत को यकजा किया। इस साल की मुहिम की खासियत लोगों का इसमें नित नए तरीकों से शामिल होना था। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियों, सकाफती जुलूसों, स्कूल और कॉलेज प्रोग्रामों और बिरादरियों के जश्न में हर घर तिरंगा का जज्बा साफ नजर आ रहा था। स्कूलों और कॉलेजों ने कौमी परचम और वंदे मातरम के बारे में जानने के लिए नौजवान लोगों की हौसला अफजाई की। ये मुहिम हर साल लोगों को तिरंगे से जोड़ने के नए तरीके लाती है और साल 2026 में भी इस मुहिम को मनाने का दायरा काफी वसी रहा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: हुकूमत ने 7,877 करोड़ रुपए की तखमीना जाती सरमायाकारी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत 31 मजीद दरख्वास्तों को मंजूरी दी है। इन मंजूरियों से 9,500 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। ये दरख्वास्तें 10 रियासतों से मौसूल हुई हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7 और महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 दरख्वास्तें शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इन दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी नामे सौंपे। ये दरख्वास्तें एसिटाइलिन ब्लैक स्पीकर्स और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैपेसिटर्स, ट्रांसीवर्स और कॉयल्स जैसी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि इन 31 मंजूरियों के साथ ही इस स्कीम के तहत कंपनियों की मंजूर की गई दरख्वास्तों की मजमू तादाद 106 हो गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि हुकूमत ने 59,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी रागिब करने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन अब हुकूमत अपने हदफ से आगे बढ़ गई है और 69,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल कर चुकी है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट

0: इस मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: वजीर तालीम जनाब प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने इम्तिहानात से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमलावरी किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनकता निजाम, डिवाइस जमा करवाने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। NTA से कहा गया है कि वो सभी इम्तिहानात के अमल की तफसीली जांच करे और उसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदाम के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। BJP के कौमी सदर नितिन नबीन ने आज पार्टी के कौमी ओहदेदारों की नई टीम का ऐलान किया। जनाब नबीन ने 13 कौमी नायब सुदूर का तकर्रुर किया है, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा शामिल हैं, जबकि जनाब पीयूष गोयल को पार्टी का कौमी खजांची मुकर्रर किया गया है। नीज BL संतोष को तंजीमी कौमी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। जनाब नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव समेत पार्टी के 8 लीडरों को कौमी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया है। पार्टी ने मुख्तलिफ मोर्चों के लिए भी नए सरबराहों के नामों का ऐलान किया है। इनमें डॉक्टर हेमंग जोशी को बतौर युवा मोर्चा सदर, रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा सदर और बंसीलाल गुजर को किसान मोर्चा का सदर के तौर पर तकर्रुर किया गया है। BJP के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के ओहदेदारों की नई टीम को मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात और नफसियात पर असरअंदाज होने वाले मादों की रोकथाम से मुतालिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में मुलव्वस गैर मुल्की शहरियों के लिए जमानत की शराइत सख्त कर दी है। ये फैसला फर्जी जमानत के खदशात के मद्देनजर किया गया है। इस सिलसिले में मुतादिद हिदायत जारी करते हुए जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत पर रिहा होने वाले गैर मुल्की शहरियों को अपने पासपोर्ट मुतालिक अदालत में जमा कराने होंगे और उन्हें पेशगी इजाजत के बगैर भारत से बाहर सफर करने के मजाज नहीं होंगे। अदालत ने मजीद कहा कि ऐसे मुलजिमान को रिहाई के एक हफ्ते के अंदर गैर मुल्कियों के इंदराज के इलाकाई दफ्तर FRRO में अपना इंदराज कराना होगा। अदालत ने हिदायत दी कि आमतौर पर मुलजिम की जमानती मुचलके की रकम के मसावी 2 जमानतें भी जमा करानी होंगी। इसके अलावा अगर तफ्तीश के दौरान मुलजिम के भारत में रिहायशी पते और राबते की मालूमात की तस्दीक हो चुकी हो, तब भी जमानत के हुक्म के 3 दिन के अंदर इन मालूमात की दोबारा बजाते खुद पेश होने पर तस्दीक की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 2 नामालूम अफराद की मुश्तबा नकल हरकत के बारे में खुफिया मालूमात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उधमपुर के जंगलाती इलाके रामनगर में नाकाबंदी और तलाशी की वसी मुश्तरका कार्रवाई की। जम्मू के हमारे नामानिगार के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी कार्रवाई ग्रुप SOG, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम ने जोफर इलाके की नाकाबंदी की और मुश्तबा अफराद का पता लगाने के लिए तलाशी की कार्रवाई की। आला ओहदेदारों की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कार्रवाई में गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। इलाके में कई मकामात पर यह कार्रवाई जारी है। इंतजामिया ने मकामी लोगों से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तआवुन करने की अपील की है। उधमपुर जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेस चौकसी बरत रही हैं और अमन और सलामती को लाख किसी भी खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन तुहीन कांता पांडे ने कहा है कि 3 अगस्त से शुरू किया गया नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जारी रखा जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए जनाब पांडे ने कहा कि बोर्ड इदारे की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज पर गौर करेगा और जरूरत के मुताबिक तब्दीली भी लाएगा। सेबी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सेबी की जानिब से मुतारिफ कराया गया 3:15 से 3:35 तक 20 मिनट का नीलामी

पेश है कार्यक्रम अंजुमन की अगली गजल। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह, शायर मलिक गुमनाम, संगीत भूपेंद्र सिंह का, एल्बम है एक हसीन शाम।

0: तलत अज़ीज़ की गाई इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीत एवं गज़लों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग, अवसर या चुनौती, इस विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी हैं डॉक्टर श्रद्धानंद, डॉक्टर उपासना राय, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह और पंकज श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, मैं श्रद्धानंद। आज हम सब एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग, जिसे हम AI के नाम से जानते हैं, उसके अवसर और चुनौतियों पर विचार करेंगे। और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी हैं, शिक्षाविद हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में मालवीय अंतर विश्वविद्यालय अध्यापन शिक्षा केंद्र के निदेशक भी हैं। शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए आपकी ख्याति है। हमारे बीच पंकज श्रीवास्तव जी हैं, काउंसलर हैं, आज विषय पर अपने विचार रखेंगे। और साथ ही हमारे बीच श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली, जिला चिकित्सालय वाराणसी की मनोचिकित्सक डॉक्टर उपासना राय जी हैं। और आज AI को लेकर के काफी हलचल है, इस संबंध पर हम चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। तो आप देखें, पहले मैं तो अपने शिक्षाविद प्रोफेसर प्रेम नारायण से ही शुरुआत करता हूं मैं, कि AI जो इस समय जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके अवसर और चुनौतियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो शिक्षा प्रणाली में जो स्थितियां बनेंगी AI का, उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं?
2: जी प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। इस शिक्षा प्रणाली में बदलाव को हम तीन क्षेत्रों में अगर देखें, पहला, क्या AI मानव बुद्धिमत्ता का विकल्प बनने जा रहा है, क्या उसकी क्षमता का विकास करेगा? और इसका उत्तर है कि इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना ये AI का काम नहीं है और इससे बचना भी चाहिए, लेकिन आदमी के इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें जरूर इसकी भूमिका है। इसलिए जो भविष्य की प्रतिस्पर्धा होगी वो ह्यूमन वर्सेज AI की नहीं होगी, ह्यूमन विथ AI, और दूसरा पक्ष होगा

0: ह्यूमन विदाउट एआई, यानी जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ है और उसमें मानवीयता भी बनी है, तो वो आगे बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात, अब ये बात है क्योंकि अध्यापक विद्यार्थी सभी इसको बस फिंगर टिप पर उनके उत्तर हैं, तो एक बड़ा सवाल है कि अगर विद्यार्थी एआई ही अगर उत्तर दे सकता है तो अध्यापक की क्या जरूरत है। दूसरी बात, क्या पढ़ने लिखने सोचने समझने की आवश्यकता या उसकी क्षमता पर उसका असर हो रहा है। निश्चित तौर से यह शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। सूचना प्राप्त करना और ज्ञान का विकास करना दो अलग-अलग चीजें हैं। एआई सूचना दे सकता है, लेकिन यह सूचना सही है या नहीं है, एआई का उपयोग करने वाले को इसका ध्यान रखना होगा। पहली बात, उसका प्रमाण क्या है, और दूसरी बात, एआई का उपयोग करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका मानवीय पक्ष कितना है। अब तो बहुत से लोग कह देते हैं कि इसको ह्यूमनाइज कर दो, ह्यूमनाइज कर देता है। मैं उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, समय बहुत कम है। दूसरी बात है कि क्या आने वाले समय में बहुत सी बात की क्या अध्यापक की भूमिका कम हो जाएगी, और मेरा उत्तर है अध्यापक की भूमिका न कभी कम हुई थी न कभी कम होगी। हाँ, उसकी चुनौतियां बढ़ेंगी,
1: बड़े
0: जैसे हमने पहले ही कहा कि ह्यूमन विथ एआई एंड ह्यूमन विदाउट एआई, तो टीचर विथ एआई एंड टीचर विदाउट एआई। भविष्य उस टीचर का होगा जिसको एआई की भी समझ हो, जिसमें मेंटरिंग की भी स्किल हो, जो मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हो, क्योंकि एआई कभी भी मानवीय संवेदनाओं को रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे समाज हो, चाहे जीवन के अन्य कोई भी क्षेत्र हो।
1: ठीक कहा आपने, मशीन तो मशीन ही है,
0: जी
1: संवेदना पर आपका ध्यान अधिक है और रहना भी चाहिए, क्योंकि संवेदना के साथ यदि शिक्षा को नहीं जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी मूल्यपरकता प्रभावित होगी। जब बात संवेदना की हो रही है तो हमारे बीच मनोचिकित्सक महोदया डॉक्टर उपासना राय जी हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा एआई का, क्योंकि संवेग का पक्ष जो है निश्चित रूप से हमारे मनोविज्ञान से जुड़ता हुआ प्रश्न है, तो इस दृष्टि को आप कैसे देखते हैं?
2: जी सर, मानसिक स्वास्थ्य एक ब्रॉड टॉपिक है जिसमें हम हमारा थॉट, इमोशन, आपका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। तो अगर हम अपने सोचने के तरीके को अगर देखें तो एआई क्या है कि बहुत सारे कॉग्निटिव स्टेप्स को हटा दिया है। जैसे पहले अगर हम कुछ चीज को, हमें कुछ जानना भी होता था, हम उसको सर्च करते थे, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी बुक्स रहती थी, उसमें हम छांटते थे, समझते थे कौन क्या रखना है क्या नहीं रखना है, आपस में कंपेयर करते थे, फिल्टर करते थे, डिसाइड करते थे, कुछ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी उसमें लगती थी, कुछ हम लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते थे, बहुत सारे स्टेप्स थे, और फिर फाइनल करके हम एक आउटपुट निकालते थे। और आज अगर हम एआई के टूल्स का यूज करते हैं तो हम सीधा क्वेश्चन डालते हैं और सीधा आंसर आ जाता है, बना बनाया पूरा, एक आप जिस फॉर्मेट में मांगेंगे उस फॉर्मेट में। तो वो जो कॉग्निटिव स्टेप्स हमारे मिस हुए, वो कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी, हमारे सोचने, हमारी क्रिएटिविटी में असर तो करेगा। तो वो एक हो गया थॉट का पार्ट। अगर हम इमोशंस की बात करें सर, तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जिससे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जिससे हम सामने वाले से इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं। और कहीं ना कहीं इंसान एआई, जो कि एक इंसान नहीं है, जिसका अपना इमोशंस नहीं है, उससे भी इमोशनली कनेक्ट हो रहा है। और ये एक प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट मशीन से हो रहा है और सोशली वो आइसोलेट हो रहा है। वो इमोशंस, एम्पथी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो नहीं समझ पा रहा है। तो ये हो गया इमोशन का पार्ट। और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे पहले समय में हम लोग पास पेशेंस बहुत था, जैसे आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइंस में हम लग जाते थे, टिकट लेने हो गया, ट्रैफिक हो गया, क्योंकि एक टाइम था कि हर चीज हमें समय लगता था और हम करते थे। और आज जैसे जैसे स्पीड हर चीज की कम होते जा रही है एआई के लिए, तो अब क्या है कि हर चीजें हमें तुरंत मिलने लगी हैं, हमें वेट करना, हमारा पेशेंस कम हो रहा है। तो आज की यंग जनरेशन में हम देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस की कमी, बहुत जल्दी बच्चे पेशेंस लूज कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एआई, मशीन गेम्स, नेटवर्किंग, जो 2G से 5G, ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्विक फिंगर टिप्स पे रिस्पॉन्सेज ले आई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर तो इससे पड़ ही रहा है।
1: निश्चित रूप से युवा जो है इससे प्रभावित तो होगा ही, क्योंकि वो बहुत तेज गति के साथ जो उसका समय का जो संतुलन है वह कुछ उसके जीवन प्रक्रिया से प्रभावित तो होगा ही। तो जो फ्रस्ट्रेशन की बात आपने कही कि धैर्य की जो क्षमता है वो खत्म हो रही है और निश्चित रूप से वह नई मानसिक समस्याओं को पैदा करेगी, तो ऐसे बीच में जो है मैं पंकज जी से बात करूंगा।

0: कि यदि युवा है तो भाई रोजगार की संभावनाएं तो बनेगी, क्योंकि उसको तो रोजगार चाहिए, उसको व्यस्त रखना है, काम चाहिए, और उसकी क्योंकि उसकी उसकी पहचान बनती है उससे। तो क्या AI से जो है हमारे रोजगार बहुत प्रभावित होंगे क्या?
1: डॉक्टर साहब, AI से रोजगार का सृजन भी होगा, रोजगार बढ़ेंगे भी और रोजगार प्रभावित भी होंगे। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि दो तरीके की हमारे पास स्थितियां आएंगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जो AI समझते हैं, AI जानते हैं, और एक ऐसी स्थिति जिसमें AI नहीं समझते हैं और नहीं जानते हैं। तो जो AI समझते हैं और AI जानते हैं, उनके लिए जो नए नए अवसर हैं वो बढ़ेंगे, और जो AI नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनके लिए अवसर कम हो जाएंगे। अब अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो AI का जो मूल आधार है वो डिजिटल है। कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी अगर हमारी अच्छी है, कंप्यूटर की समझ अच्छी है, और हम सारे एप्लीकेशंस बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारे लिए रोज नए नए अवसर उत्पन्न होंगे। अगर हम डिजिटल लिटरेसी में कमजोर हैं, कंप्यूटर को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं समझते, तो हमारे लिए अवसर सीमित होते जाएंगे। तो ये डर होना स्वाभाविक है। हमारी भारतवर्ष की जो स्थिति है, पढ़ाई का रेशियो अगर आप देख लीजिए, जब इतनी सारी स्थितियों में भाषा अलग, बोलने चालने का तरीका अलग, पढ़ने की पद्धति अलग, बहुत सारे ऐसे भी हमारे यहाँ पढ़ाई के माध्यम हैं जहां पर हम मशीनों का इस्तेमाल बहुत सीमित होके करते हैं, तो स्वाभाविक है उन लोगों के लिए दिक्कत रहेगी, चुनौती रहेगी।
0: नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि जब नई चीजें आती हैं तो लोगों के अंदर जो है ये भावना आ जाती है कि ये बहुत नुकसान करेगा। पहले तो जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच ही एक्टिव हो जाता है। और लेकिन ये है कि इसी तरह से बहुत सी चीजें हमने देखे थे, कंप्यूटर्स के जब प्रयोग होने लगे तो उन्होंने कहा बहुत, लेकिन कंप्यूटर ने रोजगार के बड़े अवसर निकाले, और आज उसी का परिणाम है कि इस तहत तक हम पहुंच पाए हैं कि AI का भी हम जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको उसका लाभ उठा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि बहुत अधिक है। अब थोड़ा सा साधन और साध्य का तो अंतर पड़ेगा ही, यदि हम उसी को बना लें और उसको उसी पर निर्भर कर दें। जैसे कि उपासना जी ने कहा कि हम जो उसको कहानियों को ये सब पढ़ करके और टेक्स्ट बनाते थे पढ़ते समय, तो उसको हम अपने हिसाब से उसको अरेंज करते थे, तो उसमें उसका समय लगता था और उसकी पूरा एक तरह से ध्यान केंद्रित होता था, जो हमेशा उसके लिए लाभकारी होता था, और इसके कारण से मानसिक अवस्थाएं ठीक रहती थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आज तो इतने दिनों से आप अध्यापन कर रहे हैं और निश्चित रूप से युवा पीढ़ी से ही सामना पड़ता है, तो युवा पीढ़ी की तैयारी के लिए आप क्या किस तरह से सोचते हैं कि बच्चे तैयार किए जाए? प्रश्न तो उनको भी तैयार होना, और शिक्षकों की भूमिका तो आप जानते ही हैं कि शिक्षक का विकल्प तो नहीं है, ये तो मैं जानता हूं, क्योंकि जो सीधे सीधे जो है हम आंख से मिला करके जो बच्चों के साथ बात करते हैं, उसकी जो संवेदनाएं होती हैं, उसकी जो विकास होता है एक तरह से पूरा का पूरा, एक है नहीं उसका विकल्प। मैं मानता हूं कि गुरु का विकल्प कहाँ है नहीं, लेकिन अब जो नई पद्धति आ गई है कि बच्चे को क्लासरूम में लैब में जाना ही है, उसको एक तरह से लैब उसका एक ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा पार्ट हो गया है कि हर पेपर में उसको कंप्यूटर से या उसके लैब ओरिएंटेशन में, खास उसे लैंग्वेज में भी मैं देख रहा हूँ, मैं तो लैंग्वेज का हूँ तो अनुवादों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इसमें बहुत सी संभावनाएं बनी, ऐसा नहीं है बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन यह है कि ये क्या नई पीढ़ी की तैयारी कैसे हम करें कि वह युवा भी बन रहे और युवा शक्ति जो राष्ट्र के लिए मजबूती का भटके ना, उस तैयारी के लिए शिक्षा में किस तरह से आप
1: देखिए,
0: देखना
1: दो
0: चाहते हैं?
1: बात है इसमें, सबका रोल है। जैसे उपासना जी ने बताया, इसमें करियर काउंसलर का भी रोल है, इसमें
0: माता
1: मनोवैज्ञानिक का
0: पिता
1: भी
0: का भी
1: रोल
0: रोल
1: है,
0: है।
1: माता पिता का भी रोल है। एक एक एक छोटी सी घटना बताता हूँ, और ये है 82-83 में मैं BEd में था, तो मेरे एक गुरुजी जो थे, तो वो एक विद्वान की किताब पढ़ करके और वो पढ़ा देते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपके बारे में आपकी जो प्रतिष्ठा है, हमने सुना है अपने पुराने विद्यार्थियों से, उसमें और इसमें कहीं मैच नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो प्रेम नारायण, बिल्कुल ठीक बात है, जिस दिन विद्यार्थी ये जान लेगा कि आप किस किताब से पढ़ा रहे हैं, वो आपसे पढ़ने नहीं आएगा, वो किताब खरीद लेगा। आज यही स्थिति है कि कंटेंट तो उसको फिंगर टिप पे मिल जाएंगे, लेकिन ह्यूमन टच कहाँ से आएगा। NEP आज कहती है कि बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में शिक्षा की बात
0: आनी
1: आनी
0: चाहिए।
1: चाहिए। तो जो मेंटरशिप है वो AI नहीं दे सकता, वो तो टीचर ही देगा, बशर्ते वो स्वयं इसके लिए तैयार हो। यानी आने वाले समय में, पहले भी थोड़ी भूमिका बदली है समय के साथ, लेकिन अच्छा टीचर वही होता था जो कंटेंट की डिलीवरी तो करता ही था, लेकिन विद्यार्थी

0: साथ ह्यूमन टच रखता था। हम सबने इसको महसूस किया है। अभी भी अच्छा अध्यापक वह होगा जो अपने विद्यार्थी को उससे जो चाहता है, अपने विद्यार्थी से जो अपेक्षा करता है, उसका औचित्य समझा दे। जैसे अभी बहन जी ने कहा कि हम लोग जब वो हर चीजें हम पढ़ते थे तो उससे एक अलग तरह का भाव अपने आप विकसित होता था और वो तैयार भी हो जाता था पढ़ करके तमाम चीजों को। अब क्या है, और जब हम उसको एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते थे तो पहले का पढ़ा हुआ और फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते करते पता चला कि परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ लीजिए, वो पुराना आपका याद रहता था। तो इस AI ने निश्चित तौर से स्मृति पर, मेमोरी पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, उसकी क्रिएटिविटी पर असर डाल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विद्यार्थी को आगाह करना होगा और समय समय पर आगाह करते रहना होगा। वो AI नहीं करेगा,
1: नहीं,
0: वो
1: बिल्कुल सही
0: अध्यापक
1: बात।
0: करेगा।
1: अध्यापक की भूमिका है और AI को तो एक तरह से मशीनी पद्धति और डाटाबेस जो है सारी चीजें हैं, और एक तरह से मान लेते कोई फाइनल है, ऐसा तो है नहीं। विकल्प के रास्ते तो खुलने खुलने हैं, तो विद्यार्थी को जो बहुत से विकल्प के रास्ते खोलने पड़ते थे वो तो संकुचित होते जाएंगे लगता है हमको कभी कभी। लेकिन यह है कि कुछ तो कुछ यदि जो अच्छे विद्यार्थी बनेंगे वो तो नई चीज पैदा कर लेंगे, उससे वो कहीं ना कहीं जो है उस AI के से प्राप्त सामग्री को भी वो अपने ढंग से कुछ ना कुछ नया करने की ताकत बना लेंगे। तो एक तरह से एक मौलिकता पैदा की जा सकती है, इस विद्यार्थी के अंदर जो है वो सारी चीजें लाई जा सकती हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि विशेष रूप से यदि विद्यार्थी अवलंबित हो जाता है, जैसे केवल AI तक रह जाता है, तो हमें परीक्षा प्रणाली में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी संभावनाएं उनको देनी पड़ेगी कि वही पर केवल निश्चित पर ही आ गया। आज तो परीक्षाएं उसी तरह से हो रही हैं, क्या आते हैं कि जो जवाब है वो एक ही जवाब है, तो जो राइटिंग वाला पोर्शन था वो तो खत्म होता जा रहा धीरे धीरे। तो भविष्य में उससे जो तैयारी हो रही है, मैं तो शिक्षा में देखता रहता हूँ कि थोड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन कुल मिला करके एक जो इमोशनल अटैचमेंट बनता था, और मैं समझता हूँ कि इमोशनल अटैचमेंट तो होना ही चाहिए। आज भी हम लोग अपने पुराने गुरुओं को याद करते हैं, कभी कभी आप माँ के हाथ के बने स्वेटर और बहन के हाथ के बने स्वेटर से जो अटैचमेंट होता है उसको तह लगा के रखते थे। लेकिन जो है संवेग हमारी स्थिति, जो बाजार से खरीदे हुए हैं उसको हम लोग तुरंत फेंकने की तैयारी में कर लेते हैं। तो ये सोच पर जो है, आप तो मनोवैज्ञानिक है और बराबर मन को पढ़ती रहती है, और मैं समझता हूँ कि यदि मन यदि स्थिर और मन जो यदि सुदृढ़ रहे तो एक बड़ी ताकत जो है जो पुरुषार्थ की शक्ति बन सकती है वो पैदा हो सकती है। तो इस दृष्टि से आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या एक प्रभावात्मक दृष्टि आपकी होगी, इमोशंस को भी खास तौर से लेकर के, उनकी क्रिएटिविटी को लेकर, रचनात्मकता को लेकर के?
2: जी सर, सर आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उन्होंने शुरू से ही शायद AI देखा है। जो अभी हमारा जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल एज हैं वो लोग, उन्होंने शुरू से AI को देखा है। तो हमारे पेरेंट्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनको बहुत सचेत रहना है, उन्हें समझाना होगा, देखना होगा कि बच्चे को कब कैसे AI यूज करने के साथ कब नहीं करना है वो भी समझाना पड़ेगा। जैसे कोई भी टॉपिक हो या होमवर्क हो, पहले बच्चे को मौका दीजिए कि वो खुद सोचे, खुद समझे, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उसके ले, एक आउटलुक बनाए और फिर उसको चेक करने के लिए या एनहैंस करने के लिए या और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भले AI का यूज करे। ऐसा ना हो कि वो सोच ही नहीं रहा है, क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एक वो एज है सर, चाइल्डहुड एडोलसेंट वाली, वो बहुत क्रिटिकल एज है। वही एज है जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाता है, सेल्फ और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। वही एज है जब वो क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करता है। वही एज है जब उसकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर हो रही होती है। वही एज है जब वो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस सीखता है। वो एज है जब वो पीयर रिलेशनशिप और पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड बनाता है। अगर बच्चा हर चीज के लिए AI की तरफ जा रहा है, और ये एक्चुअली हो रहा है, लोग और बच्चे, यूथ AI को सुबह से शाम सर्च कर रहे हैं कि क्या मुझे ये जॉब लेनी चाहिए, ये सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतर रहेगा क्या, इनसे फ्रेंडशिप करना ठीक रहेगा क्या, मुझे इस कमेंट पे कैसे रिप्लाई करना चाहिए। तो अगर हम बेसिक बेसिक चीजों के लिए रिप्लाई या बात करने के लिए हम एआई की तरफ रुख ले रहे हैं, मतलब खुद से
1: उनके शारीरिक और व्यवहारिक पक्ष में तो अंतर पड़ेगा,
2: बिल्कुल पड़ेगा।
1: क्योंकि जैसे बच्चे जो है फील्ड में जो खेलते हैं, अब यदि हाथ में लेकर के खेल रहे हैं तो उनके तमाम जो है एक्टिविटीज बंद हो जाती
2: है।
1: तो ये माना जा रहा है कि
2: जो क्वेश्चंस के लिए शायद हम अपने पेरेंट्स के पास जाते थे, अपने मम्मी पापा से डिस्कस करते थे कि आज स्कूल में ये हुआ, मुझे क्या करना चाहिए।

0: ये था या ऐसा है, क्या करना चाहिए था, वो आज हम एक चीज से पूछ रहे हैं जिसके खुद के अपने इमोशंस नहीं है। तो ये
1: जी जी
0: कंसर्न का
1: बिल्कुल
0: टॉपिक
1: सही
0: है
1: बात।
0: सर। तो हम पीयर रिलेशनशिप और पेरेंट्स रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे? एआई सर, गूगल मैप भी एआई है। पहले समय था जब मैं छोटी थी, देखती थी पापा के साथ जाती थी, रास्ते पूछते पूछते हम कितने देश के कोने हमने घूम लिए। और आज गूगल मैप पे सब कुछ है, आदमी शीशा नीचे गिरा के सामने वाले से बात ही नहीं करता सर। तो वो इमोशंस कनेक्शन कैसे डेवलप होगा? ऐसे बहुत सारी ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब ये चीज कंसर्निंग है।
1: नहीं बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूँ कि एक एआई को साधन के रूप में ही व्हाट्सएप स्वीकार करना चाहिए, और ये साध्य बना लेंगे जो एक युवा वर्ग में मैंने मेंटेलिटी देखी है कि वो फाइनली मान लेते हैं कि यही फाइनल है ये, तो जो उनके अंदर की जो सोच होती है उसको तो मैं समझता हूँ कि एक आनंद का विषय भी होगा पढ़ाते समय। मुझे तो लगता है कि एक कहना पड़ेगा कि लगता है एआई देखकर एआई से तुमने ये सामग्री बटोर ली है, लेकिन इसके वही फाइनल करते हो। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं तो कक्षाओं में कहते हैं कि हमारी बात मानो लेकिन हूबहू मत मानो, पहले इस पर तर्क करो, कुतर्क मत करना। तो मैं कभी कभी देखता हूं कि इस एज ग्रुप में जो है एक कुतर्क की भी क्षमता बढ़ती जा रही है, निगेटिविटी भी बढ़ रही है सबकी। एक लोग कहते नहीं फाइनल है, यही फाइनल है, इसमें कुछ बदलाव की अपेक्षा नहीं है। तो ये तो शिक्षा के सिलेबस जो बने या शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित हो रहे हैं उसमें जो है हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि एआई का छात्रों पर जो है उनके मौलिक सोच पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, तो उसके लिए कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे कि नहीं उठाने पड़ेंगे।
2: उठाने तो पड़ेंगे, लेकिन देखिए दो बात है। हम सभी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हैं। कोई भी अगर पाठ्यक्रम भी बनता है तो स्थानीय स्तर पर 30% तक तो उसमें बदलाव की गनीमत पहले भी थी, लेकिन हम लोगों ने अनुभव किया क्या वो 30% हमारा अध्यापक बदलने के लिए तैयार था। और हम अक्सर ये कमेंट करते थे कि भाई उसको बदलने के लिए आपको पूरा ये पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या रेलेवेंट नहीं हो उसको छांटना पड़ेगा, और उसके जगह क्या रिप्लेसमेंट चाहिए ये बताना पड़ेगा। वो पहले भी कम होता था, हम लोगों की पीढ़ी में भी कम होता था, और अब तो और कम हो गया है, अब तो इसकी भरमार आ गई है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम एआई को साधन बनाएं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उद्देश्य बना देंगे, साध्य बना देंगे तो खतरनाक हो जाएगा। और सर एक ध्यान होगा, हम लोगों की पीढ़ी लगभग 5-2 साल आगे पीछे की है। हम लोग साइंस के बारे में एक ऐसे आता था, साइंस इज गुड कंडक्टर बट बैड मास्टर, इस पर लेख लिखने को आता
1: उस दोनों पक्ष
2: था। सेम,
1: वरदान या
2: हाँ,
1: अभिशाप।
2: सेम एआई के लिए है। एआई इज गुड कंडक्टर। अगर रिसर्च करना है तो जो हम डाटा हमें चाहिए, डाटा एनालिसिस चाहिए, उसमें हम काफी टाइम लगाते थे। इसके अलावा मान लीजिए कि हम रिलेटेड लिटरेचर का सर्वे करना है, तो वो जो काम हम महीनों में करते थे वो घंटों में करके रख देगा। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग कहां से ले आएगा, वो एनालिसिस करने की क्षमता कहां से ले आएगा, वो तो आदमी की खुद की होगी। तो उसका काम आसान तो हुआ, लेकिन अगर उसने आसानी को आदत बना लिया तो परेशान होगा। और उस आसानी को अगर उपयोग करके और आगे उस बचे हुए समय को क्रिएटिव उसमें लगा देगा, अपने अप्रोच में ढाल देगा, तो वो उसके लिए सुविधाजनक होगा, वरदान भी हो सकता है। इसलिए ये दोनों ही स्थितियां हैं, वो डिपेंड करता है प्रयोग करने वाले पर। और रही बात पाठ्यक्रम की, तो सर पाठ्यक्रम बनाना दूसरों का काम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम अध्यापकों के बीच आता है, वो हम कैसे कर सकते हैं अपनी सीमा में वो कर सकते हैं।
1: नहीं बिल्कुल सही है, वो हमारी जो वैज्ञानिक उपलब्धियां बढ़ रही है, तो मैं तो नहीं समझता कि पहले दृष्टि में हमें एक नकारात्मक सोच में तब्दील करना चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आज पहले सकारात्मक सोच का विकास है, और मैं समझता हूँ शिक्षा का यही उद्देश्य है कि उसके अंदर एक सकारात्मक सोच हम विकसित करें। और रोजगार के संबंध में भी बातें आती हैं, आप काउंसलर हैं तो आप लोग युवाओं को तो बताएंगे ही कि क्या आते हैं कि केवल रोजगार के क्षेत्र बढ़ेंगे और के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास होगा, तो इसमें तो और भी संभावनाएं हैं, उसमें आप अपना कुछ कर गुजारिए। ऐसे ही आप कैसे उसको करते हैं?
3: देखिए, एआई में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन रोजगार का जो एनालिसिस करके रोजगार हमारे लिए कौन सा उपयुक्त होगा और किसमें हम अपना लंबा समय व्यतीत कर सकते हैं। पहले की जो प्रक्रिया होती थी उसमें बहुत सारे अनुभवी लोग होते थे जिन्होंने उस संस्थान में बहुत लंबा समय व्यतीत किया होता था, और अलग अलग ज्योग्राफी में जाके

0: काम किया होता था, जब उनसे हम बात करते थे तो वो अपना अनुभव बताते थे कि हाँ यह काम ऐसा है, इस ज्योग्राफी में ऐसे हो सकता है, दूसरी ज्योग्राफी में ऐसे हो सकता है, 10 वर्षों में इसकी यह उपलब्धि है, उसके बाद 5 वर्षों में यह उपलब्धि है, और एक ऐसा समय आएगा कि जब आप रोजगार सृजन की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। एआई ने क्या किया कि आपने जैसे एक क्वेश्चन डाला कि आई एम साइंस ग्रेजुएट, तो साइंस ग्रेजुएट के लिए जो वो जॉब बताएगा वो कोई अनुभव के आधार पर नहीं बताएगा, कि एक साइंस ग्रेजुएट अगर असम में काम कर रहा है तो उसको असमिया भी थोड़ी बहुत समझ में आना चाहिए, यह उसका विकास है। असम में 12 महीने बरसात होती है, तो बरसात के मौसम में किस तरह से अपनी दिनचर्या को आप व्यवस्थित रखेंगे, यह जो काम है वह असम में काम किया हुआ व्यक्ति ही बता सकता है। तो ये जो एआई का इस्तेमाल है बहुत ही सजग तरीके से करना होगा रोजगार के संबंध में। रोजगार सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है, रोजगार आरंभ है आपके जीवन का, और परिणति यह है कि आप रोजगार का ऐसा विस्तार करें कि उसमें बहुत सारी शाखाएं निकले, जिससे बहुत सारे लोगों को नए नए सृजन करने का मौका मिले।
1: नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप पंकज जी सही कह रहे हैं कि इसमें बहुत निराशा की बात नहीं है, और हमारे इस कार्य के लिए सरकार भी बहुत एक तरह से प्रतिबद्ध है कि एक जो पूरे वैश्विक स्तर पर जो एआई का दौर चल रहा है, तो सरकार का भी दायित्व तो है कि वो समय के साथ वो तेज से अपने पीढ़ी को लेके चले, और हमारा देश तो सबसे युवा शक्ति तो हमारी बड़ी मजबूत है, और उसको दिशा देने की जरूरत है, और दिशा देने के लिए जरूरी है कि उनको हम इसमें प्रमोट करें, उनको हम लोग उनको आगे बढ़ाएं कि आप ऐसा करें और इसमें तेजी से जाएं, और नए नए कहते हैं कि IITs में जो है मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो है विकास हो रहे हैं, इसके विभाग खुल रहे हैं और काम हो रहा है। तो मैं तो समझता हूँ जैसे कि जब कंप्यूटर आया तो पहले कंप्यूटर विभाग था, बाद में लैंग्वेज लैब बना तो हमारे हिंदी में भी आ गया, अंग्रेजी में भी आ गया, संस्कृत में, उर्दू में, सब जगह उसकी संभावनाएं बढ़ गई। यहाँ कोई विभाग ऐसा बचा नहीं जहाँ पर कंप्यूटर की उपयोगिता जो है सिद्ध न हो। तो हमें तो इस दृश्य से भी सोचना चाहिए कि ठीक है, और सामाजिक संरचना में तो हर देश काल की अपनी मूल्य परकता होती है, उसकी नैतिकता होती है, और कि हम उसको कैसे देखें, और सामाजिक संरचना के विकास में जो है शिक्षा का भी बड़ा योगदान है। तो इस दृष्टि से हम आखिर में डॉक्टर साहब, मैं प्रेम नारायण जी से मैं आपसे पूछूंगा कि एक शिक्षक के रूप में जो सामाजिक संरचना में जो है कुछ दबाव महसूस करते हैं क्या है AI के प्रवेश से?
2: नहीं, कोई दबाव नहीं है। दबाव तो पहले भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। जैसे अभी साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है, पहले ये था ही नहीं। बस एक ही बात हम कहेंगे कि AI का भविष्य और उसके साथ साथ हमारा भविष्य इस बात से तय होगा कि मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने मूल्यों का उपयोग कैसे करता है। जैसे करेगा, साधन के रूप में करेगा तो ठीक, साध्य के रूप में करेगा तो खतरा। दूसरी बात, साधन साइबर फ्रॉड भी करता है और अध्यापक भी करता है, यानी उसका सकारात्मक उपयोग करेगा तो सकारात्मक परिणाम, और नकारात्मक उपयोग करेगा तो नकारात्मक परिणाम। यह तय करना है कि हम सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा दें।
1: नहीं, इस आप लोगों के वक्तव्य से तो एक निष्कर्ष तो मैं पहुंच कि निश्चित रूप से हमें AI को एक साधन के रूप में विकसित करना चाहिए, और एक सकारात्मक दृष्टि से जो है, जो अपने जीवन का, जो अपने देश का, अपने परिवेश का, जो उसका जो वैल्यूज बेस्ड है, जो मूल्य परकता है, जो उसकी जो है एक तरह से मैं कहूंगा कि नैतिकता जिसको मैं कहूं, कि उसको जो है देखते हुए एक युवकों में ये दृढ़ विश्वास पैदा होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए जो है, अपने लोगों के निर्माण के लिए, अपने समाज के लिए, अपने व्यक्तिक उन्नयन के लिए, अपने पारिवारिक उन्नयन के लिए, ये सब सारे दृष्टि को समेटते हुए उसको वैल्यूज को, हम उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि हमको एक सामुदायिक स्वरूप चाहिए। इसको सोचते हुए जो है वह अपनी संभावनाओं को AI के माध्यम से एक नया विस्तार दे, और एक नई सोच पैदा करे, और एक नई एक तरह से क्रिएटिविटी जो है, रचनात्मकता को वह न छोड़े, क्योंकि हर के हाथ में एक अपना अपना गुण है, और अपना हर के हाथ में अपना एक पक्ष है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि AI जो है हमारे जीवन को निश्चित रूप से एक सुखद डालेगा, इसी क्योंकि हमें तो विश्वास करना चाहिए, और हमें अच्छी सोच पैदा करनी चाहिए। आज की परिचर्चा में प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी,

0: पंकज श्रीवास्तव जी, डॉक्टर उपासना राय जी ने अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए और मैं एक तरह से संचालक की भूमिका में श्रद्धानंद और आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग, अवसर या चुनौती, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा। प्रतिभागी थे डॉक्टर श्रद्धानंद, डॉक्टर उपासना राय, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह और पंकज श्रीवास्तव। मीडियम वेव 241.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: बापू ने कहा था,
1: सत्य ईश्वर के समान है और सच्चाई का मार्ग सदैव सबके लिए कल्याणकारी है।
0: आइए सत्याग्रह को बनाएं राष्ट्र निर्माण और विकास का मजबूत आधार।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है डॉक्टर रामशंकर का गायन। राग है मेघ मल्हार। आपके साथ तबले पर संगति की है नंद किशोर मिश्रा ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रामशंकर का गायन। राग था मेघ मल्हार। आपके साथ तबले पर संगत

0: बापू ने कहा था,
1: सत्य ईश्वर के समान है और सच्चाई का मार्ग सदैव सबके लिए कल्याणकारी है।
0: आइए सत्याग्रह को बनाएं राष्ट्र निर्माण और विकास का मजबूत आधार।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय

मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।